0: शुभ प्रभात दोस्तों, रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज में आपका स्वागत है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन में। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुनते रहें रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम।
1: आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आज पुष्पा बसनेत के बारे में, जो एक प्रसिद्ध समाज सेविका हैं नेपाल में। बहुत पहले दार्शनिकों ने ये स्थापना दी थी कि गुणों के एक तल पर मनुष्य ईश्वर के बराबर आ सकता है, और वो गुण है करुणा। शायद यही कारण है कि सज्जन लोग अक्सर कहा करते हैं कि परमार्थियों के कारण ही ये दुनिया आकर्षक बनी हुई है, वरना फरेबी और मक्कार लोग तो इसे कब का बदसूरत बना चुके होते। आइए आज एक ऐसी ही परमार्थी महिला पुष्पा बसनेत की कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने अपने सदकार्यों से न सिर्फ इंसानियत का सर बुलंद किया बल्कि इस दुनिया को कुछ और सुंदर बना दिया। आज से करीब 40 साल पहले काठमांडू नेपाल में एक कारोबारी घराने में पैदा हुई पुष्पा के पिता बेहद तरक्कीमंद थे। वो अपने बेटे बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करते थे। पुष्पा 3 भाई बहन हैं। भाई उनसे बड़े हैं और बहन छोटी। जाहिर है उनका बचपन बहुत सुकून से गुजरा, मगर उनका दिल किताबों में नहीं लगता था। खाना पकाना और साइकिल चलाना उन्हें बेहद पसंद था। खैर, किताबों और कक्षाओं से भारी जंग लड़ते हुए वो किसी तरह 10वीं तक आ गईं। मगर इसके इम्तहान को लेकर पुष्पा से ज्यादा घर वालों की धुकधुकी बड़ी हुई थी, और आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। जिस रोज बोर्ड के नतीजे आए, पिता को जापान जाना पड़ा। वो रोते हुए हवाई अड्डे की ओर बढ़े। माता पिता कितने भी अमीर क्यों ना हों, औलाद के भविष्य को लेकर वो हमेशा परेशान रहते ही हैं। पिता के ये आंसू बेटी के दिल में जा गिरे। पुष्पा को अगली बोर्ड परीक्षा के लिए भले ही 1 साल का इंतजार करना पड़ा, मगर वो पिता के लिए मुस्कुराने का मौका लेकर आईं। शहर के सेंट जेवियर्स कॉलेज ने समाज शास्त्र में ग्रेजुएशन करने की अनुमति दे दी। रुचि का विषय था तो पुष्पा का दिल भी लग गया। उस समय उनकी उम्र 21 साल थी। वो चाहती तो एक सुकून भरी हुई जिंदगी का इंतखाब कर सकती थी, मगर ख्यालों ने अचानक करवट मार ली। दरअसल स्नातक करते हुए एक

प्रोजेक्ट के तहत पुष्पा कालीमाटी जेल जा पहुंची, जहां पर महिला कैदियों के हालात पर उन्हें एक पर्चा तैयार करना था। मगर पुष्पा जब जेल के उस हिस्से में दाखिल हुई तो वहां एक दुखद आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। उनकी नजर एक 9 महीने के बच्ची पर पड़ी, जो अपनी मां की गोद में सलाखों के उस पार थी। वो बेहद प्यारी बच्ची थी। उसकी कैदी मां से पुष्पा जब बातचीत कर रही थी, उसी वक्त उसने पुष्पा की शॉल अपनी मुट्ठी में भींच ली और यूं मुस्कुराई मानो हजारों मोनालिसाएं एक साथ खिलखिला पड़ी हों। उस बच्ची की दिलकश मुस्कान पुष्पा के साथ चली आई, मगर वो हमेशा के लिए उनकी आंखों में बस गई। कैदियों के साथ मासूम बच्चों को यूं सलाखों के पीछे देखना उन्हें हैरान और गमजदा कर गया था। उन पर पहली बार ये खुलासा हुआ कि जिन कैदी माता पिता के अबोध बच्चों को बाहर संभालने वाला कोई नहीं होता, उन्हें कानून ये इजाजत देता है कि वो 8 साल तक उन्हें अपने साथ जेल में ही रख सकते हैं। इस व्यवस्था का मकसद शायद उन मासूमों को अविश्वसनीय रिश्तेदारों के बुरे व्यवहार और मानव तस्करों से बचाना था। लेकिन 8 साल के बाद क्या होना था और फिर उनकी आजादी का क्या? इस सामाजिक अध्ययन ने पुष्पा को कई दिनों तक बहुत परेशान रखा। उसी दौरान एक 5 साल की बच्ची की दर्दनाक कहानी जब उन्हें पता चली, तब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तय किया कि वो इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। दरअसल उस बदनसीब बच्ची को पिता ने ही हवस का शिकार बना डाला था, क्योंकि उसकी मां किसी अन्य पुरुष के साथ भाग गई थी। आजाद फिजा में कैदियों के बच्चों की परवरिश का ख्याल जब पुष्पा ने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताया तो किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। सबको यही लगा कि ये वक्ती जज्बात हैं, कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे। आखिर तब उनकी उम्र थी ही क्या, कुल 21 साल। मगर सींकचों के उस पार पड़े बेगुनाह बच्चों की दुखद अवस्था ने पुष्पा के मन पर गहरा असर डाला था। उस जेल अध्ययन के 2 महीनों के अंदर उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से 70,000 रुपए इकट्ठा करके किराए के घर में ही अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत कर दी। अपने माता पिता को समझाने में तो पुष्पा को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कैदी अभिभावकों को भरोसे में लेना बहुत कठिन था। लेकिन इरादे पवित्र थे तो बाधाओं को भी पिघलना ही था। आखिरकार 5 बच्चों के साथ उनका केंद्र शुरू हुआ। सोमवार से शनिवार तक वो रोज सुबह उन बच्चों को जेल से निकालकर अपने सेंटर ले आती और फिर दोपहर में उनके कैदी अभिभावकों को सौंप आती। धीरे धीरे बच्चों की संख्या 40 के करीब पहुंच गई। उनमें से कई ने तो पहली बार जेल के बाहर कदम रखा था। पुष्पा 8 साल से बड़े बच्चों के लिए एक मुकम्मल आवासीय परिसर बनाना चाहती थी, ताकि वो आजाद माहौल में पल समर सके। सन 2012 में सीएनएन ने उन्हें हीरो अवार्ड से नवाजा। उसके साथ मिली हुई 41 लाख रुपए की रकम ने उनका यह सपना भी पूरा कर दिया। इस धन से उन्होंने जमीन खरीदी और बटरफ्लाई होम का निर्माण कराया। उसके बाद से उन्होंने करोड़ों रुपए के इनाम जीते, जिनसे उन्होंने ग्रामीण जेलों के करीब भी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की। इनके कई बच्चे अब कॉलेज पहुंच चुके हैं। वे सब प्यार से पुष्पा को मामू बुलाते हैं और नेपाल अपनी इस बेटी पर गदगद है। पुष्पा ने इन बच्चों को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

दोस्तों एक मजेदार बात बताता हूं। देखिए, गमलों में लगे हुए पौधे उतने ही बढ़ते हैं जितना उन्हें पानी दिया जाए, जितना उनको खाद दिया जाए, जितना उनका पोषण किया जाए, बस इसके आगे कुछ नहीं। दो चार दिन पानी अगर आपने नहीं दिया तो वो सूखने लग जाते हैं। लेकिन उसके उल्टे जो जंगल के पेड़ हैं, जिनका पालन पोषण कोई नहीं करता, प्रकृति करती है, वो वक्त के थपेड़ों को सहते हैं, बहुत कड़ी धूप सहते हैं, बारिश सहते हैं, सर्दी देखते हैं, वो असीमित क्षमता के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। उनके अंदर एक अजीब सी ताकत होती है जो प्रकृति ने उनको दी होती है। बस यही फर्क हमारे जीवन में भी है। जो भी लोग आश्रित होकर जीवन जीते हैं, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड होकर जीवन जीते हैं, वो उसी आश्रयदाता यानी कि दूसरे व्यक्ति पर ही निर्भर होकर रह जाते हैं। अब सोचिए, पल भर के लिए अगर उस सहारे को हटा लिया जाए तो उनका तो पूरा अस्तित्व ही दांव पर लग जाता है। वो ऐसे थर थर कांपने लगते हैं जैसे बस उनकी जीवन दायिनी शक्ति ही उनसे छीन ली गई हो। जीवन में लेकिन जो लोग संघर्ष करते हैं, जिन्हें मालूम होता है कि उन्हें कोई पाल पोस नहीं रहा है, उन्हें खुद ही अपनी जगह जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं, वो इस सच को जानते हैं कि आदमी गिनती में ही तब आता है जब उसका वजूद दिखाई देने लगता है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर हमारा जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? जिस दिन हम पैदा हुए। वरना यूं देखा जाए तो हमारी बुनियाद तो 9 महीने पहले रखी जा चुकी होती है। यूं देखा जाए तो हमारा जन्मदिन तो उस दिन मनाना चाहिए ना, 9 महीने पहले। लेकिन जिस दिन हम दिखाई देते हैं, इस दुनिया में आते हैं, उस दिन हमारा जन्मदिन मनाया जाता है। तो जो अपने अनुभव के आधार पर मेहनत करते हैं, उन्हें सफलता तो मिलती ही है। वो सीख जाते हैं कि दूसरों के सहारे जिंदगी कटेगी नहीं, खुद का वजूद बनाना ही होगा। अंधेरे में कहीं पर भी एक छोटा सा नन्ना सा दीपक पूरे अंधकार को निगल जाता है। अब हाथी को देखिए, कितना विशाल होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला, उसको संभालने वाला, उसको काबू में रखने वाला अंकुश कितना छोटा सा होता है, फिर भी वो अंकुश उस हाथी को वश में कर ही लेता है। अब एक दूसरा उदाहरण लीजिए, छोटा सा हथौड़ा कितनी बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ डालता है। अब सोचिए, इनके आकार छोटे छोटे जरूर हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसा गुण है जो इन्हें असीम शक्तिशाली बना देता है। उसी तरह हमारी भी छोटी सी छोटी कोई गुण हमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से निपटने की ताकत दे सकती है। कुछ भी असंभव नहीं है, बस सोचना तो पड़ेगा कि हम ये काम कर डालें। गुणों को विस्तार देते हुए छोटी सी मेहनत हमारी जिंदगी को बदल कर रख सकती है। वैसे भी विजय में आनंद तो तभी आता है ना, जब सफलता और असफलता दोनों को हम चख लें, जब बारिश और धूप दोनों मिलते हैं, तभी तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। दोस्तों, सफलता के लिए चेहरे पर दो ही भाव बहुत हैं, एक मुस्कुराहट मुश्किलों को हल करने के लिए और दूसरी खामोशी मुश्किलों से दूर रहने के लिए। अब कामयाबी के सफर में धूप का तो देखिए बहुत

बड़ा योगदान है। यानी कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें धूप में चलना ही होगा, क्योंकि जैसे ही छांव मिलती है हम आराम करने की सोचने लगते हैं। क्यों होता है ना दोस्तों ऐसा? किसी भी समस्या की अपनी कोई लंबाई होती ही नहीं, वो तो सिर्फ हम बना देते हैं कि ये छोटी समस्या है, ये बड़ी समस्या है। जब हम किसी समस्या पर सोचते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याएं नजर आती हैं, और जब उसके समाधान के बारे में सोचते हैं तो बड़े सारे समाधान नजर आने लगते हैं। तो देखा जाए तो अगर कुछ उल्टा हो रहा है तो वो हमारी सोच का छोटापन है, हमें बड़ा सोचना ही होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही थी, जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना तो बहरे हो जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोगों की बातें तो आपका मनोबल गिराने के लिए ही होती हैं। तो बहरे हो जाओगे, कुछ सुन ही ना सकोगे, तो मेहनत करते ही रहोगे, जुटे ही रहोगे। वैसे भी जीवन में कुछ भी पाने के लिए ना शॉर्टकट होता तो नहीं, दिखाई जरूर देता है लेकिन बाद में उसके बड़े गंभीर परिणाम सामने आते हैं। कॉपी कट पेस्ट जैसी सुविधाएं ना कंप्यूटर में होती हैं, ये कॉपी कट पेस्ट जिंदगी में चलता नहीं। अगर कभी हमें लगे कि चल तो जाता है, ऐसी तो क्या बात है, बट कुछ समय बाद हमें पता चलता है हम कितने बड़े धोखे में थे। दोस्तों विचार करिए, मानिए कि कॉपी कट पेस्ट हमारी जिंदगी की सफलता के लिए बिल्कुल संभव नहीं है, हमें धूप में चलना ही होगा, इसके अलावा रास्ता ही कुछ नहीं। तो चलिए ना चलते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं।

एक समय था जब बेईमानी शब्द गाली जैसा लगता था। वक्त बदल गया और लोग किसी भी तरह से सफलता पाने की चाह रखने लगे, और बेईमानी भी बस एक योग्यता बनकर रह गई, यानी कि एक एलिजिबिलिटी, एक कला बन गई बेईमानी। बेईमान लोगों को मुखड़ा बना दिया जाता है और वो कैसा भी काम निकालकर ले आते हैं। ऐसे में दूसरे लोग मानने लगते हैं कि बेईमानी भी दरअसल एक कला है, एक योग्यता है। आप बेईमानी के साथ क्या करेंगे, मैं आपसे पूछता हूं। एक बेईमान को हटाओ तो दो नए आ जाएंगे, आप कहेंगे। इसलिए विचार ये करिए कि उसकी बेईमानी आपको प्रभावित ना कर जाए, आपको इन्फ्लुएंस ना कर जाए, आपको अफेक्ट न डाल दे। और थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए कि हम उसकी बेईमानी को सुधारें, बढ़ाएं नहीं। एक गलत व्यवस्था में से अच्छे व्यक्ति को तो निकलना ही पड़ता है। ये काम हनुमान जी ने विभीषण के साथ भी किया था। विभीषण लुटेरों और बेईमानों की नगरी लंका में रहते थे, रावण के भाई थे, लेकिन हनुमान जी ने उस बेईमानी में से एक ईमानदार को बाहर निकाला। आज भले ही लोग अज्ञानता के कारण विभीषण को घर का भेदी कहें, पर विभीषण इस बात का भी तो प्रतीक है कि बुराई के बीच में से अच्छाई की संभावना हमेशा बनी रहती है। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

कन्फ्यूशियस के जीवन के अंतिम दिनों में अनेक शिष्य उनके दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने अपने सबसे प्यारे शिष्य को पास बुलाया और कहा, मुंह खोलकर दिखाते हुए कहने लगे, गौर से देखो तो जरा, मुंह में जीभ है या नहीं? शिष्य ने उत्तर दिया, जी गुरुजी, मुंह में जीभ तो है। उन्होंने दूसरा सवाल किया, दांत हैं कि नहीं? शिष्य ने पोपला मुंह देखकर कहा, गुरुजी, दांत तो एक भी नहीं है। कन्फ्यूशियस ने कहा, जीभ मेरे पैदा होने के समय भी थी और आज भी है। दांत मेरे बाद में आए थे और आज एक भी दांत मेरे मुंह में नहीं है। इसका कारण जानते हो? कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने खुद ही कहा, जीभ कोमल और मीठी वाणी बोलने वाली है, इसलिए वो जीवन के अंतिम क्षणों तक भोजन पानी से शरीर को पुष्ट करती रहती है और शरीर का अभिन्न अंग बनी रहती है। दांत कठोर पदार्थ के होते हैं, इसलिए वो 36 होते हुए भी शरीर के अभिन्न अंग नहीं बन पाते। इससे यही शिक्षा लो कि तुम सभी जीभ की तरह कोमल और सरस बनकर अंतिम समय तक अपने देश और समाज की सेवा करते रहना। इतना कहकर कन्फ्यूशियस ने अपनी आंखें मूंद ली। उनके शिष्यों ने गुरु के बताए हुए उपदेशों का पालन करने का संकल्प लिया।

फूलों से सीखिए दोस्तों। फूलों का जीवन बहुत ही स्वाभाविक, सहज और सरल होता है। वो अपनी प्रसन्नता से खिलते हैं। ये दूसरी बात है कि उनकी प्रसन्नता से दूसरे भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह का जीवन अगर मनुष्य का हो जाए तो उसके जीवन में भी स्वाभाविकता, सहजता और सरलता आ जाएगी। वो प्रकृति के सौंदर्य को प्राप्त कर सकेगा, खुद खुश रहेगा, दूसरों को भी खुश रख पाएगा।

तो दोस्तों, भक्ति में दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाली हूँ जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं बैठी होती है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। लेकिन सच बताऊं, कभी कभी ये स्ट्रेंथ नहीं होती, ये थकान होती है। लंदन के सियोन जोन्स का एक केस सुन लीजिए और खुद ही जज करिए। उनके फादर ICU में एडमिट हुए। डॉक्टर से बात करना, मेडिकल नोट्स लेना, ट्रीटमेंट समझना, अपडेट्स लेना, सब कुछ उन्होंने अकेले हैंडल किया, हर चीज। रिजल्ट, स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि उनके बाल झड़ने लगे उम्र से पहले। फिर भी उन्होंने किसी से हेल्प नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि आजकल का नया ट्रेंड है ना, हाइपर इंडिपेंडेंस। हर चीज हाइपर, हर चीज खुद करना, फिर किसी पे डिपेंडेंट मत होना, और इमोशनली भी खुद को सिर्फ मिसहैंडल करते रहना हर समय। साइकोलॉजिस्ट कैथलीन सैक्सटन कहती हैं, आज के टाइम में लोग आई डोंट नीड एनीवन को पावर समझने लग गए हैं। लेकिन रियलिटी में ये लोनलीनेस, बर्नआउट और डिस्टेंसेस क्रिएट करता है और कुछ नहीं। सोचिए, अगर आप हमेशा सब कुछ खुद करते रहोगे तो लोग इवेंचुअली मान लेंगे इसे हेल्प की जरूरत ही नहीं है, और फिर जब सच में जरूरत होगी शायद कोई आगे ही नहीं आएगा। बहुत बार ये हैबिट बचपन से शुरू होती है, जब इमोशनल सपोर्ट कंसिस्टेंट नहीं मिलता, जब ट्रस्ट्स बार बार ब्रेक होते हैं, जब बच्चा क्वाइटली यही डिसाइड कर लेता है कि फाइन, मैं खुद कर लूंगा सब कुछ, और वो सर्वाइवल मोड अडल्टहुड तक चलता है। लेकिन सर्वाइवल और कनेक्शन अलग चीजें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हम इंसान हैं, कोई सोलो प्रोजेक्ट नहीं। उर्वशी लाड 43 साल तक सिंगल रही। उन्हें लगता था हेल्प मांगना मतलब वीक दिखना है। उन्होंने थेरेपी और जर्नलिंग स्टार्ट की, स्लोली खुद को ओपन करना सीखा। उन्होंने बताया, पहली बार जब उन्होंने किसी को कॉफी के लिए पे करने दिया, उन्हें बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। कॉफी लेने देना भी अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वही स्मॉल स्टेप उनकी लाइफ चेंज कर गया। आज वो शादी करने वाली हैं। कभी कभी हीलिंग ग्रैंड जेस्चर नहीं, छोटी सी कॉफी से शुरू होता है। सारा हार्टिश एक बड़ी सिस्टम को सजेस्ट करती हैं। एक ऐसा फ्रेंड या पार्टनर चूज करो जो आपसे थोड़ा डिफरेंट हो। वीक में एक बार उसके साथ बैठो, अपना वर्कलोड शेयर करो, उनसे एडवाइस मांगो। बस एक एडवाइस मांगना ये सिग्नल देता है कि तुम मैटर करते हो मेरे जीवन में। और डॉक्टर नादिया रहमान भी यही कहती हैं कि हम सब बायोलॉजिकली कनेक्शन के लिए बने हैं। कोलैबोरेशन ह्यूमन नेचर है, तो हेल्प लेना वीकनेस का साइन कैसे हो सकता है? शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम परफेक्शन में ट्रैप हो गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम बस हेल्प लेने से डरते हैं। हमें लगता है अगर किसी ने हेल्प दी और वो परफेक्ट नहीं हुई तो शायद हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, या शायद कोई मना कर दे हेल्प करने से तो हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे। पर रिलेशनशिप परफेक्ट आउटपुट के लिए नहीं होते, वो शेयर्ड एफर्ट के लिए होते हैं।
अगली बार जब कोई चैलेंज आए तो खुद से एक लाइन बोल कर देखिए, इस बार अकेला नहीं।

इस बार मिलकर। हो सकता है पहले ऑकवर्ड लगे, हो सकता है सामने वाला आइडियल रिस्पॉन्स ना दे, पर स्ट्रॉन्ग होना ये नहीं है कि आप कभी रोए नहीं। स्ट्रॉन्ग होना ये है कि जब रो रहे हो तो किसी को कॉल कर सको और बिलीव करो कि वो उठाएगा, वो रहेगा, वो साथ देगा। दोस्तों, हाइपो इंडिपेंडेंस शील्ड लग सकता है, लेकिन शील्ड पहनकर आप किसी को गले नहीं लगा सकते। कभी कभी आमर उतारना पड़ता है, हेल्प मांगनी पड़ती है। हेल्प मांगना कोई वीकनेस नहीं है, वो सच में करेज है, और शायद असली स्ट्रेंथ यही है जब आप एक्सेप्ट करते हो, मैं अकेला नहीं रहना चाहता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ बहुत सॉर्टेड चलती है। सुबह 6 बजे योगा, ग्रीन माचा, सनराइज की रील। मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे तो मेरी सिर्फ एक ही रील चल रही होती है, मेरी बेडशीट लपेटने की रील। लोग कहते हैं ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ, मैं कहती हूँ ग्रेटफुल कि वाईफाई चल रहा है यार।

जब खामोशी ने जान बचाई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि खामोशी भी किसी की जान बचा सकती है? हम अक्सर सोचते हैं कि हीरो वो होता है जो जोर से बोलता है, जो स्पीचेस देता है, जो आवाज उठाता है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी खामोशी। नाम था मार्सेल मार्सियो। आज सारी दुनिया उन्हें सबसे मशहूर माइम आर्टिस्ट के नाम से जानती है। एक ऐसा कलाकार जो बिना एक शब्द बोले हंसा देता था, रुला देता था और सोचने पर मजबूर कर देता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उन्हें खामोश रहना सीखा कैसे और क्यों। वर्ल्ड वॉर टू का वक्त था, फ्रांस पर नाजीज का कब्जा था। मार्सेल एक यंग ज्यूइश लड़का था। स्टेज और स्पॉटलाइट के सपने देखने की जगह वो सर्वाइवल का मतलब समझ रहा था। ये वो दौर था जहां गलत नाम, गलत पहचान और एक गलत आवाज मौत का सबब बन जाता था। मार्सेल ने फ्रेंच रेजिस्टेंस ज्वाइन की। वो बंदूक लेकर लड़ने नहीं गया, उसका मिशन कुछ और था। उसे बच्चों को बचाना था। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे, कुछ इतने छोटे कि उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, खतरा होता क्या है। उन्हें नाजी टेरिटरी में चुपचाप निकलना था, फॉरेस्ट से गुजरना था, चेक पॉइंट्स क्रॉस करने थे, सोल्जर्स खड़े थे जो जरा सी भी आवाज पे सब खत्म कर देते थे, और सबसे मुश्किल काम, बच्चों को चुप रखना। आपने कभी छोटे बच्चों को 5 मिनट से ज्यादा चुप करवाने की कोशिश की है? यहां बात घंटों की थी, दिनों की थी, जिंदगी की थी। ना गाना, ना कहानी जोर से, ना हंसी की आवाज, सिर्फ खामोशी, एक लंबी खामोशी। लेकिन मार्सेल ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। उसने खामोशी को पनिशमेंट नहीं बनाया, उसने खामोशी को खेल बना दिया। अपने एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन से, इनविजिबल ऑब्जेक्ट से, हवा में कहानियां बनाकर, बॉडी लैंग्वेज से, आंखों की चमक से वो बच्चों को एंटरटेन करता। वो हवा में इमेजिनरी बॉल उछालता, इनविजिबल रोप खींचता, गिरते हुए वॉल का ड्रामा करता।

बच्चे हंसते थे लेकिन बिना आवाज के। वो डर को वंडर बना देता था, खौफ को क्यूरियोसिटी में बदल देता था। वो फॉरेस्ट्स के बीच कांस्टेंट थ्रेट के नीचे एक साइलेंट परफॉर्मेंस चलता था, और वो परफॉर्मेंस सिर्फ आर्ट का नहीं था, वो शील्ड था, एक प्रोटेक्शन था। बच्चे चुप थे क्योंकि वो डरे हुए नहीं थे, वो कैप्टिवेटेड थे। एक एक करके मार्सल उन्हें सेफ बॉर्डर तक ले गया। हर बच्चा जो भी बचा, एक फ्यूचर था जो जिंदा रहा, एक कहानी जो खत्म नहीं हुई। वॉर के बाद जब दुनिया ने क्लैप किया, जब स्टेज लाइट्स जली, जब मार्सल ने अपना आइकॉनिक कैरेक्टर बिप द क्लाउन क्रिएट किया, तब तक वो सिर्फ परफॉर्मर नहीं था, वो इंसान था जिसके लिए खामोशी का मतलब अप्लॉज नहीं, जिंदगी था। उसकी साइलेंस एम्प्टी नहीं थी, वो फिल्ड थी, भरी हुई थी यादों से, ट्रॉमा से, करेज से, और सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी से। इसलिए शायद जब मार्सल स्टेज पर इनविजिबल वॉल बनाता था, लोग सिर्फ एक फनी एक्ट नहीं देखते थे, वो देखते थे एक इंसान जिसे पता था कभी कभी आवाज से ज्यादा ताकत खामोशी में होती है। आज के दौर में हम नॉइज से घिर गए हैं, नोटिफिकेशंस, डिबेट्स, ओपिनियंस, लाउड रिएक्शंस, ट्विटर वॉर्स एंड क्या नहीं। हर किसी को बोलना है, हर किसी को सुना जाना है, लेकिन शायद मार्सल की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि साइलेंस भी एक एक्शन है। कभी कभी सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जिंदा रहना होता है, सबसे बड़ी आर्ट प्रोटेक्ट करना होता है, और सबसे बड़ा करेज होता है डर के बीच में किसी और को मुस्कुराने का एक रीजन देना। मार्सल मार्सेओ ने दुनिया को सिर्फ हंसाया नहीं, उसने दुनिया को बचाया, और शायद इसीलिए आज भी उसकी खामोशी बोलती है, क्योंकि वो खामोशी कभी खाली नहीं थी, वो इंसानियत से भरी हुई थी। सुनकर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: कल डिलीवरी ऐप्स का प्रेशर अलग ही है भाई। डिलीवरी वाला आता है और स्माइल करके सबसे पहले कहता है, मैडम 5 स्टार दे देना। उसकी आंखों में वो इंटेंसिटी देखकर ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी का रिजल्ट रेटिंग इसी पे डिपेंड करता हो। एक बार मैंने 4 स्टार दिए तो दिया, बट रात भर मुझे गिल्ट रहा। मुझे लगा मैंने किसी का करियर रुइन कर दिया। अब तो 5 स्टार दे ही देती हूँ, चाहे समोसा थोड़ा फिलोसफिकल ही लगे।

0: मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा।
1: क्या?
0: यही है, यही है, यही तो है वो। मीना मीना।

खामोशी से खेलना और खामोशी से खेलने की कला। कभी ऐसी सुबह होती है जब दुनिया थोड़ी ज्यादा तेज लगती है। हॉर्न की आवाज, नोटिफिकेशंस की वाइब्रेशंस, डेडलाइंस का प्रेशर और वो अजीब सी थकान जो पूरी नींद लेने के बाद भी फील होती है। लेकिन इसी दुनिया में किसी कोने में एक छोटा सा फूल खिला होता है। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई स्पॉटलाइट, ना कोई सेलिब्रेशन, बस धीरे से एक पंखुड़ी खुलती है और उस खामोशी में जीने का एक पूरा लेसन छुपा होता है। मैं इसे कहती हूं द फ्लावर बींग, जैसे ह्यूमन बींग होता है। फ्लावर मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है, ये याद करना है, वापस आना है, खुद से खुद को मिलवाना है। जब हम सच में किसी फूल के पास बैठे होते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए, तब कुछ बदलने लगता है। आप नोटिस करना अगर अभी तक नहीं किया, उस फूल की खूबसूरती में कोई एफर्ट नहीं है, वो इम्प्रेस नहीं कर रहा, वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा, वो बस धूप को एक्सेप्ट कर रहा है, बाहें फैलाए हवा को महसूस कर रहा है और वक्त को अलाउ कर रहा है। और धीरे धीरे हमारा मन भी कोमलता में घिर जाता है। कभी आपने फूल को ध्यान से देखा है, सच में देखा है? उसकी स्टेम का हल्का सा झुकना, पेटल्स का टेक्सचर, लाइट का उनके किनारों पर हिलना, बस कुछ पल के लिए अंदर की सारी नॉइज खत्म हो जाती है, अर्जेंसीज डिसॉल्व होने लगती हैं। जो बचता है वो होता है एक प्रेजेंस, और वही मेडिटेशन है। हर फूल के अंदर एक सीक्रेट होता है, ब्यूटी और इम्परमनेंस दुश्मन नहीं होते। बट किसी कली का फूल तक जो सफर होता है वो इतना सुंदर होता है, इतना सेक्रेड होता है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। फूल को कोई पैनिक नहीं होता खिलने का, उसे डर भी नहीं होता मुरझाने का, वो सिर्फ अपने सीजन्स को ऑनर करता है। और हम क्या करते हैं? हम सब समय एंडिंग से डरते हैं, हम विंटर्स को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट स्प्रिंग का आतुरता से सिर्फ वेट करते रहते हैं। लेकिन असली ग्रोथ सरेंडर मांगती है। जैसे अनीस निन ने कहा है, एक दिन आता है जब बड बनकर रहना ब्लॉसम होने से ज्यादा पेनफुल हो जाता है। फूल कभी कली बनकर छिप नहीं सकता, ना छिपा रहता है, वो खुलने का रिस्क लेता है। अलग अलग कल्चर्स में फूल हमेशा अवेकनिंग का सिंबल रहे हैं। वेदास में सहसरा लोटस, जो सर के ऊपर डिवाइन अवेयरनेस की अनफोल्डिंग है। बुद्धिज्म लोटस में कीचड़ से उठकर प्रिस्टीन ब्लूम बन जाना। और सूफी पोएट्स के लिए हर पत्ता, हर बूटा एक कहानी कहता है। रूमी कहते हैं, हर पंखुड़ी एक विजिबल प्रेयर है। और साइंस भी मानता है, फूल देखने से हार्ट बीट स्लो होती है, स्ट्रेस कम होता है और मूड अपलिफ्ट होता है। जापान के शिरिन योकू, फॉरेस्ट बेदिंग जिसको कहते हैं, ये बताता है कि नेचर वापस देता है वो सब जो नॉइस छीन लेती है। लेकिन सच कहूं, हमें रिसर्च की जरूरत नहीं थी। जो इंसान शाम के वक्त एक गेंदे के फूल को देख चुका है, वो जानता है कि थेरेपी क्या होती है। जब हम फूल के साथ बैठते हैं, पहले हम उसका कलर देखते हैं, उसकी खुशबू महसूस करते हैं, धीरे से बाउंड्री ब्लर होने लगती है। आप सन को लाइट नहीं, वार्मथ के रूप में महसूस करते हैं, हवा को सिर्फ हवा नहीं, स्पर्श के रूप में देखते हैं। फूल अपनी जगह क्वेश्चन नहीं करता, वो कंपेयर भी नहीं करता, और वो जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करता। वो अपने टाइम पर खुलता है, अपने टाइम पर बंद होता है, और अपने टाइम पर
मिट्टी में लौट जाता है। उसका ट्रस्ट क्वाइट है पर कंप्लीट है, मुकम्मल है, और शायद वही विजडम हम सभी ढूंढ रहे हैं। अपने टाइम पर भरोसा करना। हमारे अंदर भी सीजन्स होते हैं, कभी हम बड होते हैं यानी कि कली, हेजिस्टेंट डरे हुए बट पोटेंशियल से भरे हुए, कभी हम ब्लूम करते हैं एक्सप्रेसिव और खिले हुए, और कभी हम बस फेड हो जाते हैं जैसे फूल का गिरना या मुरझा जाना, जिसको हम जानते हैं लेटिंग गो के नाम से। हर फेज जरूरी होता है। मॉडर्न लाइफ हमें सिर्फ करने पर फोकस करना सिखाती है, फिक्स करो, इम्प्रूव करो, चेस करो, लेकिन फूल एक सच कहता है, बिकमिंग फोर्स से नहीं होती, बिकमिंग स्पेस देने से होती है। आप हैमर से बड को नहीं खोल सकते, पुश करके पेटल्स नहीं ला सकते, ग्रोथ को सिर्फ अलाउ किया जा सकता है। जब मैं आज एक फूल देखती हूँ, मुझे उसकी फ्रेजिलिटी नहीं दिखती, उसकी कोमलता सिर्फ नहीं दिखती, मुझे उसमें दिखती है एक क्वाइट स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ जो चिल्लाती नहीं, जो कंपेयर भी नहीं करती, जो बस अपनी जगह पर खिलती रहती है। हर ब्लूम एक छोटा सा मिरेकल है, और जब उसका सीजन खत्म होता है वो जमीन पर गिरता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सब कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। तो अगली बार जब आप किसी फूल के पास से गुजरें, जरा सा रुकिए, सिर्फ देखिए मत, विटनेस कीजिए, उसकी खामोशी को महसूस कीजिए, उसकी ओपननेस को देखिए, और शायद आप भी थोड़ा सा धीरे खिलने लगे। इस दुनिया में जो हसल मांगती है, फूल हमें स्टिल रहना सिखाता है, और शायद सबसे बड़ा मेडिटेशन यही है, आंखें बंद करना नहीं पर आंखें खोल के एक फूल को देखना, उसे महसूस करना, उसे अपने जीवन में उतारना। इसे ही फ्लावर बींग कहते हैं, शायद ह्यूमन बींग को कुछ सिखा दे। सोच कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: ऑनलाइन शॉपिंग ने सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। फोटो में मॉडल को देख के लगता है ये जैकेट में तो मैं हीरो लगूंगा। पार्सल आता है, मैं पहनता हूँ, मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और लगता है जैकेट नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस टाइट थी। फिर रिव्यू पढ़ता हूँ, एग्जैक्टली सेम एज शोन। तब समझ आता है प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। अनुशासन हमारे भीतर की प्रेरणा से उपजता है। अगर हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड हैं, उत्साहित हैं, तो हमारा डिसिप्लिन दूसरी सभी चीजों को संभाल लेता है। अब भले ही हमें ऊब हो जाए, थकान हो जाए या आलस हो जाए, अगर कोई काम करना है तो उसे करते रहना ही डिसिप्लिन कहलाता है। देखिए, किसी काम को करने की जरूरत, उसके पीछे के अच्छे कारण, उससे मिलने वाली संतुष्टि सेटिस्फैक्शन, सभी हमें उस काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है ना? हमेशा के लिए यानी परमानेंट कुछ होता नहीं है। जीवन कई तरह के उतार चढ़ाव का एक चक्र है। यह एक तरीके का गोल समझिए, घूमने वाला झूला टाइप्स है। खुद पर या अपनों पर अगर बुरा समय आ जाए तो बड़ा दुख होता है। तब यह समझने की जरूरत होती है कि ये हमेशा नहीं रहेगा। नथिंग इज परमानेंट। कठिन समय के बीच एक दूसरे का हाथ थामे, साथ साथ निभाते हुए आगे बढ़ते रहें। आप देर तक पूरी तरह अकेले कभी रहते ही नहीं। आइसोलेशन में ज्यादा रह नहीं सकते आप। कहा जाता है कि नरक के रास्ते भी कट जाते हैं अगर हम चलना जारी रखें। मौकों की दस्तक तभी होती है भैया, जब हम दरवाजे बनाते हैं। वाह, देखिए, कोई बैठे बिठाए अच्छे मौकों को थाली में परोसकर हमें देता नहीं है। ऐसा बहुत ही कम होता है। इससे केवल हमारे समय, ऊर्जा और योग्यता का नुकसान ही होता है भाई। किसी और का इंतजार करने से बेहतर है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लें। यह बात भी ध्यान रखें कि हम अपनी किस्मत बनाते हैं, किस्मत हमें नहीं। बने रहिए आरजे समीर के साथ।

वो जरूर लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, वरना ये मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर तो ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, और कोई कागज रद्दी और कोई कागज गीता बन जाए।

कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया।

जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो परमात्मा का शुक्र अदा करना कि उसने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो तो सबके लिए अकेला ही काफी है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आज समीर के पास।
1: कुछ लोगों को आपकी याद भैया तब आती है जब व्हाट्सएप पर चमत्कारी मैसेज भेजने के लिए 11 लोग ना मिल रहे हों।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

डूबता है तो पानी को दोष दे देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष दे देता है। इंसान भी बड़ा अजीब है, कुछ नहीं कर पाता तो किस्मत को दोष दे देता है।

बचपन में माँ कहती है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। जवानी में बीवी कहती है, आपको कुछ समझ नहीं आता। बुढ़ापे में बच्चे कहते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता। सारी उम्र बीत गई, साला समझने की उम्र कौन सी है, यही समझ नहीं आता।

गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अपने हाथ में फोन हो तो खाना खाने में एक घंटा लग जाता है, और अपना फोन किसी दूसरे के हाथ में हो तो खाना खाने में 2 मिनट लगते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

एक ये जहां, एक वो जहां, दोनों जहां के बीच फासला बस एक सांस का, जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां।

तो दोस्तों रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम पर प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहिए रेडियो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। आज सबसे पहले सुनते हैं ये गीत, शीर्षक है रीछ।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, काव्य रचना प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार महेश प्रभाकर, गायन स्वर देवाशीष, धीरा घोष, अनुपमा, मेघा, दीक्षा, संस्कृति, राशि और अनुराग, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और जानते हैं भारत में मूक और बोलती फिल्मों का रोचक इतिहास।
3: वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, शत प्रतिशत बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। March 14, 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी।
4: पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी।
5: शोबोट।
4: और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था,
6: हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी।
4: अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया।
7: उदा के नाम पे प्यार।
4: इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है।
7: अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है घर लेने की, ले दे खुदा के नाम पर प्यारे, ताकत है घर देने।
3: आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी।
8: You see, as I told you, they are free.
9: Alma, you're safe.
8: Never fear, my little one. We were more than a match for those cutthroats.
3: फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे।
10: इन तीनों में से मेरा कोई भी नाम नहीं, मुझे तो सिर्फ दिलावर कहते हैं।
3: उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने।
4: यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी।
5: हाँ देवी, जन्म से अछूत लेकिन कर्म से देवी,
4: ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था,
6: मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है।
3: जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी।
11: मैंने जिस मंत्र की साधना की, इसे ध्यान से

0: इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे।
1: हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा।
0: सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों से बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था।
2: अभी तक की जानकारी के अनुसार आलम आरा फिल्म की कोई भी प्रति मौजूद नहीं है। इस फिल्म का पुनर्निर्माण 1956 और 1973 में नानू भाई वकील के निर्देशन में किया गया। इस फिल्म के प्रचार में प्रयोग की गई ये टैगलाइन आज के दौर में भी कितनी सटीक और सार्थक है। All living, breathing, 100% talking।
3: जब सिनेमा ने बोलना सीखा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: बांगुई

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं। अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना। मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना। ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
0: इस तरह शहर से आए लोग जंगल से बेरोक टोक लकड़ी काटते रहे और मुखिया बांगुई को माला माल करते रहे। मुखिया को गांव से, गांव के लोगों से, खेतीबाड़ी से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उसे तो सिर्फ अपने शानदार तिमंजिले मकान के बनकर पूरा होने में दिलचस्पी थी। उधर गांव के लोगों के पास खाने को नहीं था। और इधर मुखिया अपने ऊंचे मकान में बैठा बांसुरी बजा रहा था। तभी आ गया बरसात का मौसम।
3: ए, ए, ए,
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
4: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे भाई, ये भी कोई
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
4: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
5: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है? बोलो।
4: मैं बोलू? अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
2: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
6: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
2: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया है ना?
0: गांव वालों की बेरोजगारी, भूख, बीमारी की समस्याएं बढ़ती रही। मगर मुखिया बांगुई इन सब से बेखबर अपने ऊंचे मकान में मगन था। एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही। नदी, नाले, बांध सभी उफनने लगे। व्हाइट वोल्टा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। जंगल के जो पेड़ नदी की धारा को रोके रखते थे वो कट चुके थे। इसीलिए नदी की धारा इस बार बेरोक टोक गांव में घुस गई। गांव वाले घर बार छोड़कर ऊंची पहाड़ियों की तरफ भागने लगे। गांव के खेत, खलिहान, झोपड़े, मकान पानी में डूब गए। आखिर एक दिन
7: मुखिया जी
8: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
7: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
8: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
7: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
8: तो भरने दो।
7: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
8: अरे तो जाने दो।
7: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
8: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
7: लेकिन मुखिया जी,
8: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
7: जी मगर
8: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
5: मुखिया जी,
8: अब क्या है?
5: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
8: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
7: मुखिया जी,
8: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
7: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
8: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
7: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी।
6: अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहे तो हमारे साथ चल सकते हैं।
8: नालायक डरपोक, अरे भाग रहे हो, इस महल को छोड़कर भाग रहे हो, जाओ चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
6: जैसी आपकी मर्जी।
8: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा, क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है, दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या, अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई उस पेड़ पर भूखा बदहाल 4 दिनों तक बैठा रहा और सचमुच इस घटना ने मुखिया बांगुई की आंखें खोल दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि भूख क्या होती है, बेघर बार होने का दुख क्या होता है। इसके बाद जब वो अपने उजड़े गांव के निवासियों के बीच पहुंचा तो उसने अपने हाथों से उन सब के लिए झोपड़े बनाए और हाँ, अपने हाथों से बहुत से पेड़ भी लगाए। फिर कभी किसी को उन्हें काटने नहीं दिया।
1: दीजिए
2: नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: संतुलित आहार।

शीलू एक होनहार लड़की थी। पढ़ाई में तो वो तेज थी ही, पर उससे भी ज्यादा उसे खेल प्यारा था, जिसके लिए वो भोजन भी छोड़ देती थी। वो माँ की डांट तो खा लेती, पर नहीं खाती तो खाना ठीक से नहीं खाती। अरे भाई, उसे खेलने की जल्दी जो लगी रहती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि खाना न खाने की वजह से शीलू बहुत ही कमजोर होती चली गई। और इसी कमजोरी के कारण शीलू का खेलना भी बंद हो गया। अब तो ज्यादातर वो बिस्तर में ही लेटी रहती। हाँ भाई, वो बीमार हो गई थी। एक बार क्या हुआ कि इसी बीमारी की हालत में एक दिन नींद में शीलू को लगा मानो रसोई घर में रखी खाने की चीजें आपस में बातें कर रही हैं और उससे कुछ कह रही हैं। उसने देखा कि कटोरे में रखा दही फिसल फिसल कर उसके पास आया और बोला,

ने अपनी बात जैसे ही पूरी की, रोटी की टोकरी में से एक रोटी दौड़कर शीलू के पास आई और बोली,

तभी क्या हुआ बच्चों, कढ़ाई में रखी तरकारी यानी सब्जी भी शीलू के पास आ गई और वो बोली,

इसके बाद अचानक शीलू को किसी के आने की आवाज आई। शीलू ने गौर से देखा, अरे ये तो गोल मटोल लाल लाल सेब है जो बड़ी देर से सबकी बातें सुन रहा था। सेब बोला,

यानी आहार जब संतुलित होता है, यानी शीलू अगर खाती थोड़ी मात्रा में लेकिन ठीक समय पर दूध, दाल, रोटी, सब्जी और दही, तो ये भोजन होता एकदम सही, क्योंकि इसमें मिलता शीलू को प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। कहो कैसी रही।

0: सेब की बात सुनकर शीलू की नींद अचानक खुल गई और न जाने उसे क्या हुआ कि उसने जल्दी से अपनी माँ को बुलाया और कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए आप मेरे लिए रोटी सब्जी दूध दही और रसोई में जो भी खाने की चीज रखी हो उसे जल्दी से ले आओ, कुछ भी हो। माँ को बड़ी खुशी हुई कि शीलू ने कम से कम कुछ खाने को मांगा तो सही।
1: संतुलित आहार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: आधा पूरा।

0: 메콩강.
1: 메콩강. 메콩강. 메콩강. 메콩강. 메콩강.
2: 아리아리아리. 준누 문누 또 बहुत परेशान है।
3: हाँ दीदी।
2: भला बताओ तो क्यों परेशान है?
3: रसगुल्ला खाने के लिए।
2: अरे भाई, तो फिर खाते क्यों नहीं?
3: क्योंकि क्योंकि
2: अरे भाई, इसमें सोचने की क्या बात है? देखो, रसगुल्ला तो है एक, और चुन्नू मुन्नू है दो भाई, तो दोनों पूरा पूरा रसगुल्ला कैसे खा सकते हैं?
3: हाँ दीदी, ये बात तो है।
2: तो अब वो क्या करें, जरा बताओ तो। नहीं समझ में आई? चलो इसी बात पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ।
1: हाँ दीदी, कहानी कहानी।
2: कहानी सुनकर तुम ये समझ जाओगे कि चुन्नू मुन्नू क्या करें। ठीक है?
1: ठीक है।
2: तो सुनो, गोपाल और मोहन दो दोस्त थे। कौन थे? दोस्त,
1: दोस्त।
2: दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ खेलते और एक ही साथ खाना भी खाते।
3: अच्छा।
2: एक दिन की बात है, मोहन की माँ बीमार हो गई। मोहन ने माँ से कहा कि आज खाना मत बनाओ, मैं एक सेब लेकर स्कूल जाता हूँ। तो बच्चों, मोहन एक सेब लेकर स्कूल चला गया। क्या लेकर गया स्कूल?
1: सेब।
2: सेब। एक सेब, शाबाश। और मोहन का दोस्त गोपाल उस दिन एक रोटी लेकर आया।
3: अच्छा।
2: मोहन और गोपाल साथ में ही खाते थे ना?
3: हाँ, वो साथ में खेलते भी थे और खाते भी साथ में थे।
2: शाबाश। जब दोनों खाना खाने बैठे तो दोनों ने अपना अपना खाना निकाला। बोलो तो उन दोनों ने क्या क्या निकाला?
3: मोहन ने एक सेब निकाला।
2: हाँ।
3: और गोपाल ने एक रोटी निकाली।
2: बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ कि उन दोनों ने क्या किया?
3: क्या किया दीदी?
2: गोपाल ने एक रोटी निकाली और एक पूरी रोटी को आधा आधा कर लिया।
3: क्या कर लिया दीदी?
2: उसने एक पूरी रोटी के दो बराबर बराबर टुकड़े कर लिए।
3: अच्छा, रोटी के दो बराबर बराबर टुकड़े कर लिए।
1: ओहो, तो इस तरह उसने एक पूरी रोटी को आधा आधा कर लिया।
2: बिल्कुल सही।
3: तो फिर क्या हुआ दीदी?
2: तो अब हुआ ये कि आधी रोटी गोपाल को मिली और आधी रोटी मोहन को मिली।
3: अच्छा, आधी रोटी गोपाल को मिली और आधी रोटी मोहन को मिली।
2: शाबाश। अब दोनों दोस्तों ने आधी आधी रोटी खाई।
3: वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, एक ही रोटी दोनों ने खा ली। फिर क्या हुआ दीदी?
2: फिर मोहन ने अपना एक सेब निकाला और सेब को भी आधा आधा कर लिया। और
4: गोपाल ने आधा सेब खाया और मोहन ने आधा सेब खाया।
2: अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। अब समझे तुम मैंने ये कहानी क्यों सुनाई?
1: हाँ दीदी, हम समझ गए।
2: क्या समझ गए?
3: यही कि चुन्नू मुन्नू ने भी एक रसगुल्ले का क्या किया होगा।
2: बोलो तो, क्या किया?
3: एक पूरे रसगुल्ले को आधा आधा कर लिया
1: और
3: आधा चुन्नू ने खाया
1: और आधा मुन्नू ने खाया।

0: वो दीदी
1: हमें खिलौने खिलाना ना।
2: अच्छा अच्छा अच्छा दिलाती हूँ खिलौने खिलौने वाले। ओ खिलौने वाले
3: जी बहन जी
2: इधर आओ।
4: जी बहन जी क्या दूँ?
2: खिलौने वाले इन बच्चों को खिलौने दे दो।
1: मैं चश्मा लूंगा, मैं गेंद दूंगी, मैं बल्ला भी लूंगा और वो देख गुड़िया कितनी सुंदर है, मैं तो गुड़िया भी लूंगी। हाँ मैं भी।
2: बच्चों तुम्हें खिलौना तो मिलेगा पर एक एक ही खिलौना मिलेगा बस।
1: अच्छा तो मैं गुब्बारा लूंगा।
2: ठीक।
5: नहीं मैं गुब्बारा लूंगी।
1: मैं भी गुब्बारा ही लूंगा।
5: मैं भी गुब्बारा लूंगी।
2: अरे
1: गुब्बारे चाहिए हमें। हाँ, गुब्बारे चाहिए।
4: बच्चों मेरे पास तो एक ही गुब्बारा है, तुम दोनों को कैसे दूं?
1: कोई बात नहीं भैया, हम गुब्बारे का आधा आधा कर लेंगे।
4: गुब्बारे का आधा आधा कैसे करोगे भैया?
5: हम गुब्बारे को आधा आधा कर लेंगे, हमारी दीदी ने बताया है हमें।
4: नहीं बेटे, गुब्बारे को हम आधा आधा नहीं कर सकते।
2: हाँ बच्चों, गुब्बारे को हम आधा आधा नहीं कर सकते।
1: क्यों? चुन्नू मुन्नू ने भी तो रसगुल्ले को आधा आधा कर लिया था। वैसे ही हम भी गुब्बारे को आधा आधा कर लेंगे।
2: ये कोई रसगुल्ला थोड़े ही है, ये आधा आधा करने से फट जाएगा।
5: नहीं हम तो कर लेंगे। हाँ, आधा करना है।
2: बेटा मेरा गुब्बारा आधा आधा कैसे होगा?
5: नहीं हम तो गुब्बारा लेंगे। हम
2: अच्छा अच्छा ठीक है, तुम गुब्बारा लो और खुद ही आधा आधा करके देख लो, देखो ये आधा होता है कि नहीं। देखो गुब्बारे वाले।
3: जी बहन जी।
2: जरा ये गुब्बारा दे दो इन बच्चों को।
4: लीजिए बहन।
1: लाओ भैया।
2: लो।
1: आ, आ, आ, आ।
2: देखा फट गया ना गुब्बारा, मैंने कहा था ना गुब्बारा आधा करोगे तो फट जाएगा।
1: तो क्या अब हम इससे नहीं खेल सकेंगे?
2: बच्चों सब चीजें आधी नहीं की जाती, जैसे तुमने अभी गुब्बारा आधा किया तो वो फट गया और बेकार हो गया, अब तुम इससे नहीं खेल सकते।
1: तो दीदी क्या ये गेंद भी नहीं आधी हो सकती?
2: आधी तो कर सकते हैं पर आधी करने से ये बेकार हो जाएगी।
5: तब तो ये गुड़िया पतंग चश्मा कुछ भी आधा आधा नहीं हो सकता?
2: नहीं बेटे, इन्हें भी आधा नहीं कर सकते, ये भी आधा करने से बेकार हो जाएंगी।
5: अच्छा तब तो मैं गेंद लूंगी
1: और मैं

0: दोनों मिलकर खेलेंगे।
1: अब गेंद और बल्ला आधा आधा तो नहीं करोगे ना?
2: नहीं दीदी, ये कोई सेब और रोटी थोड़ी ही ना है।
1: खिलाने वाले
3: अजी।
1: इनको दे दो जो मांग रहे हैं।
3: जी बहन जी, बोलो बच्चों क्या दूं?
2: मैं तो लाल बल्ला।
0: मुझे वो लाल नहीं, हरी वाली गेंद चाहिए।
3: अच्छा, हरी वाली ले लो। और ये तुम्हारा बल्ला और ये तुम्हारी क्या?
0: गेंद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और कैसे हैं हमारे किसान साथी? हाँ, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी काफी अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। अब वो खेती किसानी से बिल्कुल फ्री हो गए हैं और हमारे किसान साथियों के मन में कई सवाल चल रहे होंगे, क्योंकि खेती करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जैसा कि दुकानदारों के पास जो दुकानदारी का काम रहता है और उनको दिन भर चिंता लगी रहती है कि अब हम क्या करें, कैसे बढ़ाएं, कैसे आगे करें, ऐसे ही हमारे किसान साथी रहते हैं कि जिनको चिंता बनी रहती है कि अब क्या करें। हमारी फसल तो ओके घर पर तैयार होकर घर पे आ गई है, आगे चलकर हम क्या करें। तो उन हमारे किसान साथियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि अगर झाबुआ जिले की अगर बात करें तो हमारे किसान साथियों ने जैसे कि चना हुआ, साथ साथ में सरसों भी बोते हैं और गेहूं की फसल मुख्य रूप से बोई जाती है। और ऐसे में हमारे किसान साथियों के पास अब जो समय रहता है, अब वो क्या करते हैं कि घर पे फ्री बैठे होते हैं। तो उन किसान साथियों को हम एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि ये सलाह आप हमारे किसान साथियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे जो किसान साथी जिन्होंने चना या फिर सरसों का उत्पादन किया है, चना हुआ, बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि चूंकि पहाड़ी इलाका है तो कम खेती होती है, मटर हुआ, तो ऐसे फसल जो हम उगाकर बाजार में बेचते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि किसान को क्या पड़ी रहती है कि जैसे ही फसल हमारी उगे और जैसे ही फसल उगके घर पर आए और हम सोचते हैं कि हमें जो हमारा कर्ज पूरी हमने साल में खेती में लगाया था, उस कर्ज को निपटाने के लिए उनको तत्काल प्रभाव से वो खेती की जो फसल हुई है उसको बेचना पड़ता है। लेकिन किसान साथियों, कभी आपने सोचा है कि इसको थोड़ा रोक कर यदि हम बेचें, दूसरा यदि हम इन जैसे चना अपने क्षेत्र में होता है, झाबुआ जिले की बात करें, चना होता है तो चने की दाल बनाकर यदि हम पैकिंग कर और हम अपने किसान साथी बाजार में बेचें। अब उनको बाजार में बेचने के लिए हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि बाजार में कैसे बेचेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा चूंकि तरह तरह की योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, और जैसा कि हमने जिक्र भी किया था कि हमारे किसान साथियों की आमदनी किस तरीके से दुगनी हो, तो ये छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि हो सकती है। सबसे पहले कि वो पैकिंग कर बेच सकते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो बनाई जाती है उसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे किसानों का संघ जो बना रहता है उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी बेच सकते हैं अपनी चीजों को, यानी फसल को पैकिंग कर उसको बेच सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, जिन श्रोता साथियों के पास जमीन है, सिंचाई का पर्याप्त व्यवस्था है, तो वो सब्जियों का व्यवसाय कर सकता है। सब्जी क्योंकि अब सीजन है जायज की फसल का, जायज की फसल में हम क्या करते हैं सब्जी लगाते हैं, और हम खास तौर पर देखते हैं कि भिंडी का मौसम भी चल रहा है, भिंडी इस मौसम में लगा सकते हैं। साथ साथ में जो हमारी ककड़ी आती हैं उसको भी हम लगा सकते हैं। तो ये सब्जियां जो है वो हमारे किसान साथी जिनके पास कम जमीन है, साधन है सिंचाई का, ड्रिप पद्धति से हम उसको उगा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। अब इसके लिए किसान साथी सोच रहा होगा कि कैसे बनेंगे, तो इसके लिए जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे, साथ साथ में किस तरीके से नए पद्धति से हमारे किसान साथी झाबुआ जिले में अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं, यानी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इस पर भी हम विषय विशेषक से सलाह लेकर आप तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। चूंकि धीरे धीरे बात काफी बड़ी हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे किसान साथियों को अब मन हो रहा होगा कि गीत संगीत हो जाए, तो जरूर सुनवाते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो भील टांटिया 90.8 FM, आप लोग रेडियो अपनी बातें।

अपना हक नहीं लड़ाई से, अपना हक नहीं लड़ाई लड़वा मतो। तमे जान थी मारा भाई है, मारी बहन, मारा चाचा, मारी काकी है।

0: रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने इस प्याले से भील गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो विषय पर बातचीत करने के लिए विषय विशेषज्ञ तैयार है। आइए इनकी बात को हम सुनते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आमंत्रण के लिए और मुझे अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए। मैं जेसी शर्मा, चेयरमैन ग्लोबल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी आगरा से हूं और इसी विषय में पिछले 40 साल से अधिक समय से कार्य कर रहा हूं। जैसा कि मेरा मानना है, अपना जो देश है, भारत देश है, कृषि प्रधान देश है, इसमें कृषि की पैदावार, बागवानी की पैदावार, दूध की पैदावार, तमाम खाद्य पदार्थों की पैदावार इतिहासा होती है
2: जी।
1: आज हम विश्व में कृषि में अव्वल माने जाते हैं। कृषि प्रधान देश के दुनिया में हमारी पहचान बनी हुई है। बागवानी में भी हम दुनिया में विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। केवल एक देश हमसे आगे चल रहा है, बाकी समूचे विश्व में हम कृषि प्रधान ही नहीं, बागवानी प्रधान देश भी पाने का हम बहुत जल्दी हमें अवसर मिलने वाला है
2: जी।
1: और ये सारी चीजें हालांकि देश में बहुत अच्छी तरह से पैदा हो रही हैं, इनकी प्रचुर मात्रा में पैदावार होने के फलस्वरूप हम आज आत्मनिर्भर हैं खाद्यान्न के क्षेत्र में। एक समय था कि हम विदेशों से खाद्यान्न की आपूर्ति किया करते थे, लेकिन आज हम इतने आत्मनिर्भर हैं कि न केवल देश की आवश्यकता पूरा करते हैं बल्कि विदेशों को निर्यात भी बहुत बड़ी तादाद में खाद्यान्नों का भारतवर्ष से किया जा रहा है
2: जी। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन इसको अगर हम एक दूसरे तरीके से देखा जाए कि हम लोग इसे, जो हमारे युवा साथी है, युवा पीढ़ी है जो आने वाली, उसको कैसे हमें रोजगार में जोड़ सकते हैं इस कार्य को लेके?
1: बहुत अच्छा अवसर है, इसमें असीमित संभावनाएं हैं। ये ऐसा कार्य क्षेत्र है कि हमारे पास कच्चे माल की, खाद्यान्नों की, तिलहनी फसलों की, दलहनी फसलों की, बागवानी फसलों की और नाना प्रकार के उत्पादों की कोई कमी नहीं है। दुर्भाग्य है हमारा कि हम जिस तरह पैदावार में विश्व में अग्रणी देशों में गिने जाते हैं, पैदावार के साथ साथ हमारा रखरखाव थोड़ा सा कमजोर है, भंडारण की व्यवस्था समुचित न होने के कारण और उद्योगों का भरपूर विकास न होने के कारण हमारी फसलों का लगभग 25-30% प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है। यानी कि 5,000 करोड़ प्रति माह की फसलें प्रतिवर्ष बर्बाद हो रही हैं, जो एक गंभीर मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। मैं समझता हूँ कि गंभीर चिंतन का विषय है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लिहाजा इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है, इससे संबंधी अनेकों ऐसे रोजगार स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बेरोजगारी भी दूर हो, युवाओं को रोजगार मिले और देश की होने वाली इस महान क्षति को, बहुत बड़ी क्षति को, इस विशाल क्षति को भी रोकने में हम कामयाब हो सकें। इसलिए इससे संबंधित प्रोसेसिंग व्यवसाय की, प्रिजर्वेशन व्यवसाय की सुरक्षित रख करके लंबे समय तक और इस्तेमाल किया जा सके, ऐसे उत्पादों की यूनिटें, इकाइयां लगाने की हमें आज बहुत आवश्यकता है और युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए।
2: बिल्कुल सर। सर यहाँ पर हमारे मन में एक छोटा सा सवाल उठता है कि जो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे साथियों को बताएं कि क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से?
1: देखिए, इस देश में विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में
2: जी
1: गेहूं की फसल, चना, मैं समझता हूँ मटर भी यहाँ काफी होती है, और भी अनेकों खाद्यान्न पैदा होते हैं। सोयाबीन का भी शायद कुछ क्षेत्र है यहाँ आसपास मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में
2: जी।
1: तो इससे संबंधी छोटे छोटे फ्लोर मिल हैं, आपके सोयाबीन के उत्पाद हैं, सोया प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ साथ सोयाबीन से रिफाइंड ऑयल है, ऐसे उद्योग हमारे इस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। और जहां तक सवाल है फल सब्जियों का, तो मैं समझता हूँ यहाँ नींबू की और आपके जो है वो अदरक की, टमाटर की बताए से पैदावार होती है। इससे संबंधी बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं, जैसे टमाटर सॉस है, टमाटर प्यूरी है, टमाटर जूस है, टोमेटो पेस्ट है, और इसके अलावा नींबू का बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ यहाँ सिट्रस का एरिया है
3: जी।
1: और सिट्रस से संबंधित उद्योग जैसे कि नींबू जूस है, स्क्वैश है, शरबत है, नींबू का शीरप, अचार है, ये सब सफलतापूर्वक यहाँ ये उद्योग लग सकते हैं। आपका मटर बहुत होती है, मटर को आजकल सफल मटर के रूप में ठंडा करके फ्रोजन फूड के रूप में आईक्यू यूनिट कहते हैं लगाकर मटर को, हरी मटर को रखा जा सकता है सब्जी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। आजकल सफल मटर काफी लोकप्रिय भी है
0: जी,
1: तो उसे भी यहाँ स्थापित करने के पूरे अवसर हैं। साथ ही साथ अदरक से भी संबंधित यहाँ काफी व्यवसाय लग सकते हैं, अदरक की सुखा करके रखा जा सकता है सौंठ के रूप में, इसका कैंडी नाम से उत्पाद बनता है जिसको कहते हैं सूखा मुरब्बा
0: जी, जी।
1: और अचार भी बन सकता है और जूस भी निकल सकता है, जिंजर का एक बहुत अच्छा एक ड्रिंक भी बनता है, पेय पदार्थ बेवरेज जिंजर ड्रिंक जो जाड़ों में औषधीय क्वालिटी का होने की वजह से फूड प्रोडक्ट के साथ साथ मेडिकेटर प्रोडक्ट भी है, उसकी अपनी औषधीय गुणवत्ता भी है। लिहाजा ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो कि यहाँ लोकल फसलों के आधार पर या आसपास के क्षेत्रों में होने वाली फसलों के आधार पर स्थापित हो सकते हैं और निश्चित रूप से युवाओं को एक अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्षेत्रीय उत्पादों का भरपूर उपयोग होगा और राष्ट्रीय जो फसलों की बर्बादी का जो सिलसिला है वो काफी कम होगा और ये क्षेत्रीय विकास में प्रोसेसिंग उद्योगों का विकास क्षेत्रीय विकास के लिए एक बहुत अच्छा अवसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला साबित होगा।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और हमारे किसान साथियों में हमारे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे किसान साथी बड़े ध्यान से सुन रहे थे और ध्यान से सुनते सुनते और गीत संगीत भी हुआ है और इनकी बातचीत हमारे जेसी शर्मा जी हैं जो चेयरमैन हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि कितना अपना भारत में कितने उत्पादन होता है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था जो चलती है वो खेती से चलती है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की और हमारे किसान साथी समझ गए होंगे कि हमारे जो किसान साथी जागरूक हैं उनको तो और जागरूक होने की जरूरत है और जो हमारे किसान साथी सोच रहे हैं कि वही परंपरागत खेती उसी ढंग से हम चलेंगे तो अब समय आ गया है कि हमें अब वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की आवश्यकता है। तो वैज्ञानिक ढंग से हमारे श्रोता साथी किस तरीके से खेती करें यह भी एक बड़ा सोचने वाली बात है। तो इसके लिए भी आपको बता देना चाहते हैं कि समय समय पर आपके झाबुआ जिले में जो हमारे केवीके है यानी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर हमारे पदस्थ जो वैज्ञानिक रहते हैं, पदस्थ अधिकारी जो रहते हैं जो कृषि पर विशेषज्ञ हैं उनसे हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा परियोजना भी चला रही है तो ऐसे में हम इन सारे जो जानकारी है उनको इकट्ठा कर यदि हम अपनी खेती में बदलाव करें तो जायज सी बात है आने वाले समय में जरूर हम दावा से कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपकी आय में वृद्धि जरूर होगी। क्योंकि जब तक हम अपनी सोच को परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम नई पद्धति से वैज्ञानिक पद्धति से खेती नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। खास तौर पर देखा जाता है क्योंकि पथरीला इलाका है, कैसे करें, पानी रुकता नहीं है और रुकने के साथ साथ जो हमारे किसान साथी उनके पास सीमित जमीन है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो ड्रिप जो कि हमने पहले ही बताया था कि इसकी योजना चलाई जा रही है, ड्रिप बाय स्प्रिंकलर हुआ इसकी योजना चला रही है, शासन की योजना से लाभ लेकर हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं क्योंकि अब वक्त है हमें इन योजनाओं का लाभ लेने का। खेती किसानी में आप किस तरीके से बीज उपचार कर यदि हम खेती वाड़ी करें तो जायज सी बात है कि आने वाले समय में हम अपनी खेती में परिवर्तन ला सकते हैं और अपनी खेती को बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात सोचने वाली और सुनने वाली बात है और आपको खुशी होगी कि आपके इस झाबुआ जिले में रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुन खुल गया है तो आप जरूर सुनिएगा क्योंकि बाहरी महत्वपूर्ण खेती किसान से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं और जरूर सुनिएगा और जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। और हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे कि हम कैसे फीडबैक दें, फोन नंबर तो होना चाहिए, तो आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा फोन नंबर जो है जो आप कॉल करके हमें बता सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके यदि सवाल है उस सवाल का जो आप हमें प्रश्न पूछेंगे उस सवाल का हम जवाब भी अपने विषय विशेषज्ञ से जरूर देंगे। नोट करिएगा, हमारा नंबर है 94251436003।

यानी 9425413603। हिंदी में बता देते हैं, 49425413603 इस नंबर पर कॉल करके और हमें अपने जो भी आपके सवाल हैं उसको आप रख सकते हैं और हम अपने विषय विशेषज्ञ से आग्रह करेंगे उन सवालों का आपका जवाब सही समय पर मिले, जिससे हमारे किसान साथी अपनी खेती में परिवर्तन करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, यानी विराम का, लेते हैं एक छोटा सा संगीतमय विराम। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात।

0: तड़प मारे थोड़ा सा।
1: तो देखिए, जैसे खेती में जो मूलभूत खेती है उसके अतिरिक्त उसमें क्या जोड़ सकता है, आपको एक उदाहरण के साथ मैं बताऊं। यही जो आपका बिरगुआ है वहां पे किसान ने पिछले साल ब्रोकली लगाया
2: जी।
1: लोग सामान्य रूप से बोलते हैं कि ब्रोकली कौन खाता है, लेकिन उस किसान की ब्रोकली 300 रुपए केजी और करीब 1.5 लाख रुपए की उसने जो है
2: जी
1: आय अर्जित करी पूरे सीजन में। तो इस तरीके से चेरी टोमेटो है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपका सलाद में बहुत सारे आपके सलाद आजकल हैं जो मार्केट में आते हैं, उसके सीड भी अवेलेबल हैं। तो जरूरी ये है कि आप दो चीजें ध्यान रखिए कि एक तो मार्केट में किस फसल की कितनी डिमांड है
2: जी।
1: और उसकी क्या प्राइसिंग है
2: जी।
1: दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज ये है कि टमाटर ये सब भी करिए, लेकिन उसके लिए भी टाइमिंग सेट करिए कि किस टाइम पर मार्केट में जाने पर, जैसे धनिया टमाटर आज के परिवेश में अभी वर्तमान में मंडी में जाएं तो धनिया 200 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, इस तरीके की फ्लक्चुएशन रेट पर नॉर्मली बिकती है। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, केवल आपको हाई बेड तैयार करनी होती है धनिया की, जो सामान्य रूप से सामान्य खेत होता है उस पर नहीं ग्रो करती है। आप थोड़ा सा खेत के को आप हाई करिए, उस पर बेडिंग करिए, जिससे आप धनिया के सोइंग करेंगे तो जिस तरीके की धनिया आपकी मार्केट में अवेलेबल होती है सामान्य किसान भी धनिया को कर सकता है। तो अगर आपको इस तरीके के संसाधन या अपनी आय बढ़ानी है तो आपको ये सब चीजों की जानकारी लगातार बनाए रखनी पड़ेगी कि क्या मार्केट में किस सब्जी की, किस फसल की क्या डिमांड है। धनिया, जैसे धनिया केवल दोनों ही पर्पज से इस्तेमाल होती है, हरी सब्जी की, हरी मतलब सलाद या सब्जी में डालने के लिए, चटनी बनाने के लिए। दूसरा जो है उसके सीड का बहुत बड़ा स्कोप है। आप मंदसौर मंडी है मध्य प्रदेश में, लोग एक समय ऐसा आता है कि बड़े बड़े व्यापारी अपना जो है या बड़े बड़े जो उनके पास पैसा होता है वो बुक कर देते हैं कि हमारा 200 बैग बोरा रख दो, जब ऑफ सीजन होगा तब हम उसको सेल करेंगे। तो मेरा मतलब है कि थोड़ा सा ये भी चीजें हैं कि अगर जिस समय आप उत्पादित करके हुआ तुरंत बेच के आप बेचने के बजाय उसको रखे रहें, कुछ समय तक वेट करें, जब आपका ऑफ सीजन दिखे मार्केट में उस टाइम में आप इसको सेल करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा जो मैं बताया बागवानी और ये दोनों चीजें, आपका फिशरीज एक बहुत बड़ा है सेक्टर, आपको बताऊं कि कितना जल का कितना प्रभाव है कि उससे प्रॉपर नहरें बनाई जाएं या जिससे आपका बेतवा है या और जो नदियां हैं, तो ये भी एक रीजन रहा है थोड़ा पिछड़ेपन का। तो ये भी उसमें एक जरूरी है कि जल संसाधन, जल मैनेजमेंट, आज अमृत धारा या अमृत जो आपका योजना चल रही है कि हर घर पे जो है पाइपलाइन या पाइपलाइन। तो ये भी हो कि हर किसान के घर पर कितना वन ड्रॉप वन क्रॉप जो आपका कॉन्सेप्ट है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसको भी ये फॉलो हो यहाँ पर भी, तो ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे और उससे उनको फायदा होगा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे किसान साथियों की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी,
1: बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपनी बातें।
4: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने हमारे विषय विशेषज्ञ संतोष पांडे जी को सुना, उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जिस तरीके की हमने खेत बनाए हैं, जिस तरीके की हमारी इस झाबुआ जिले में हमारे किसान साथी खेत करते हैं, खेती करते हैं, और जैसा मिट्टी है उस हिसाब से हमें सब्जियों को लगाना चाहिए, उस हिसाब से हमें अपने खेती को करना चाहिए। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि आप वैज्ञानिक पद्धति से खेती करिएगा, तभी आय में वृद्धि होगी। और खासतौर पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात पर जोर डाला है कि हमारे किसान साथियों को थोड़ा रोक के हमें बेचना चाहिए, जो भी आपके उत्पादन हुआ है उसको हम सोच समझ कर बेचना चाहिए, तभी हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जब तक हम अपने वैज्ञानिक पद्धति से खेती नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर झाबुआ जिले की बात करें तो यहाँ पर पथरीला इलाका है और हमारे किसान साथी कितनी मेहनत करते हैं, कम से कम 10-10 15-15 पानी लगते हैं तब वो फसल का उत्पादन होता है। ऐसे में कौन सी पद्धति ऐसी होती है, कौन सी पद्धति ऐसी है जो अपने झाबुआ जिले में हम लोग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सलाह लेने की आवश्यकता है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आप जाइएगा, उनसे सलाह लीजिएगा। कृषि विस्तार अधिकारी भी आते हैं, उनसे सलाह लीजिएगा। समय समय पर आत्मा भी परियोजना चला रही है, उनसे भी जाकर सलाह ले सकते हैं और अपनी खेती को वैज्ञानिक पद्धति से कर सकते हैं। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। फोन नंबर है हमारा 94-25-41-36-03। इस नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं खेती किसानी से जुड़ी। साथियों, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं इन प्यारे से गीतों को। नमस्कार।

0: तड़प मारे थोड़ा सा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया की 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल।
2: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले।
2: जिंदगी के रंग गीतों के संग के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका नाम है श्याम कैनी जी। बाकी की बातचीत हम श्याम जी से करेंगे, उनका परिचय भी उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। श्याम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए।
3: सुमीर जी, मैं गोवा का रहने वाला हूँ और बाय प्रोफेशन मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है।
2: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। जैसा कि इस प्रोग्राम की आत्मा है, जैसा कि इस प्रोग्राम की रूह है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपनी पसंद का कोई गीत सुनवाइए।
3: मेरे सबसे फेवरेट सिंगर जो है वो मुकेश जी है और शुरुआत में उनका ही गाया हुआ संत ज्ञानेश्वर इस फिल्म का एक गीत मैं सुनाना चाहता हूं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो।
2: बहुत प्यारा गीत, आइए दोस्तों सुनते हैं मुकेश जी की आवाज में संत ज्ञानेश्वर फिल्म का ये गीत।

0: श्याम जी बहुत बहुत आभार आपके इस गीत के लिए। तो अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: बचपन से ही मेरा सोचना था कि मैं इंजीनियर बनूं, जो उसी रास्ते से मैं चलता गया और मुझे मेरे काम में सक्सेस मिल गया और फाइनली 1977 में मुझे सिविल इंजीनियर की डिग्री मिल गई।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कौन से कॉलेज से सर?
1: गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज, गोवा का ही है।
0: वाओ, वेरी नाइस। अक्सर ऐसा होता है सर कि हम बचपन में कुछ बनने की सोचते हैं लेकिन जिंदगी में, दुनिया हमें कहीं किसी और तरफ ले जाती है, वहां भी हम सक्सेसफुल होते हैं लेकिन फिर भी बचपन का वो सपना कभी कभी याद आता है। जैसे मैं अपना शेयर करूं, मैं बचपन में आर्किटेक्ट बनना चाहता था और भविष्य मतलब जिंदगी ने और दुनिया ने और यू नो डेस्टिनी ने मुझे फार्मासिस्ट बना दिया और अब मैं कुछ और हूं, तो तो ये चीज हो जाती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे दोस्तों के लिए आप अगला गीत बताएं जो हम उन्हें सुनवाएं।
1: किशोर कुमार जी का एक गाना मुझे बेहद पसंद है, ए जीवन है, पिया का घर फिल्म से।
0: बहुत प्यारी, बहुत प्यारा गीत है ये जीवन है। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गीत।

उसे अपना लो।

0: श्याम जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा और इसमें मैं थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाल रहा हूं कि आपकी सबसे पसंदीदा गायिका कौन है, लेडी सिंगर?
1: मेरे पसंदीदा गायिका तो लता मंगेशकर जी है
0: जी,
1: और कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि वो हमारी गोवा की है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, ये जानकारी तो मुझे नहीं थी। दिस इज एक्चुअली अ न्यूज टू मी, ब्यूटिफुल। तो इस बात पे ही श्याम जी, अगला कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे आप?
1: लता मंगेशकर जी का जो गीत मैं सुनाना चाहता हूँ वो है अनाड़ी फिल्म का तेरा जाना।
0: तेरा जाना अनाड़ी फिल्म का, बहुत बेहतरीन। श्याम जी, आपकी फरमाइश पर आइए, दोस्तों को हम यही गीत सुनवा रहे हैं। नूतन जी पर फिल्माया हुआ फिल्म अनाड़ी का ये गीत।

0: प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं श्याम जी, और आपसे एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछना चाहूंगा। अब फर्ज कीजिए आपको एक जिन्न मिल जाए जो आपकी 3 इच्छाएं पूरी करने की बात कहे, तो क्या इच्छाएं होंगी आपकी, क्या मांगोगे आप उनसे?
1: इनसे क्या मांगू अभी? हमारी फैमिली को बहुत खुश रखे
0: जी,
1: यही मांगूंगा। इसमें सब कुछ आ गया।
0: ओके, बाकी 2 इच्छाएं तो रह गई साहब।
1: ये एक इच्छा में ही 3 आ गई साहब।
0: क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्याम भाई। अब बताइए हम अपने दोस्तों को कौन सा गीत सुनवाएं?
1: रफी साहब का गाया हुआ मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, फिल्म दोस्ती का गाना।
0: बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही प्यारा गीत। आइए दोस्तों, रफी साहब का गाया हुआ दोस्ती फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही प्यारा गीत। श्याम भाई आगे बढ़ते हैं और ये पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको मौका मिले कि आप अपनी जिंदगी में पीछे जाकर, पास्ट में जाकर किसी एक चीज को बदल सके तो क्या बदलेंगे आप?
1: मैंने गाने को बहुत लाइफ में बहुत लेट शुरू किया। पहले तो इतना मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो अगर मैं पहले शुरू करता शायद तो मैं एक थोड़ा आगे पहुंच जाता गाने के क्षेत्र में। तो यही मैं चेंज करना चाहता हूं कि मैं पीछे जाऊं और मेरे यंग एज में से मैं गाना फिर से शुरू करूं।
0: बहुत सुंदर, क्या बात है, ये तो मजेदार बात है कि आपको क्लियर कट पता है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं और वही चीज आप बदल देना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत, तो बताइए अब कौन सा गीत सुनवाया जाए?
1: मन्नाडे साहब का कस्मे वादे प्यार वफा सब।
0: वाह क्या बात है,
1: उपकार फिल्म का।
0: जी आइए दोस्तों सुनते हैं उपकार फिल्म का मन्नाडे जी का गाया हुआ ये गीत।

0: श्याम भाई आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: हॉबीज है एक तो संगीत, दूसरा है मुझे स्पोर्ट्स में भी बहुत दिलचस्पी है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और टेबल टेनिस। मैंने कॉलेज में रिप्रेजेंट किया है क्रिकेट और टेबल टेनिस में अपने कॉलेज टीम को।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कौन सा गीत सुनवाया जाए हमारे दोस्तों को?
1: तलत जी का गाया हुआ जलते हैं जिसके लिए।
0: तलत महमूद जी का गाया हुआ ये खूबसूरत गीत जलते हैं जिसके लिए, आइए दोस्तों सुनते हैं।

0: श्याम जी, अगला सवाल हमारे इस पूरे प्रोग्राम का सबसे मुश्किल सवाल है, संभल जाइएगा। अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: जैसा कि मैं हूं वैसा।
0: कैसा?
1: मैं एक इंजीनियर हूं। मैं अपने प्रोफेशन से खुश हूं, संगीत में दिलचस्पी रखता हूं
0: जी,
1: और जिसको मैं मदद कर सकूं वो सबको मेरी तरफ से जो भी मैं कर सकता हूं वो करूंगा।
0: बहुत बढ़िया,
1: यही बता दीजिए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा ही सीधा सच्चा परिचय जो मैं किसी को भी आपके बारे में दे सकूं। थैंक यू सो मच। अगला कौन सा गीत सुनवाएं अपने दोस्तों को?
1: हेमंत जी का, हेमंत कुमार जी का गाया हुआ सूरज रे जलते रहना।
0: हेमंत दा का गाया हुआ ये प्यारा सा गीत, आइए दोस्तों सुनते हैं।

0: श्याम भाई आगे बढ़ते हैं और मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई यंग बच्चा या कोई बच्चा अगर आपको अपना मेंटर बनाना चाहे, आपके सारे अच्छे गुण सीखना चाहे, आपसे ये सीखना चाहे कि वो जिंदगी में सफल कैसे हो, तो क्या आप उसे सिखाएंगे?
1: अगर हो सके तो जरूर सिखाऊंगा। मेरे सिखाने से अगर किसी का भला होता है तो मैं जरूर वो कोशिश करूंगा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो अगला कौन सा गीत हम अपने सुनने वालों को बताएं?
1: मुकेश जी का गाया हुआ एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
0: वाह, सुंदर गीत। आइए दोस्तों सुनते हैं मुकेश जी का गाया हुआ श्याम भाई की फरमाइश पर ये गीत।

0: श्याम भाई, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि आप हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हैं?
1: अपने काम में इंटरेस्ट लेता हूँ, दिल से जो मेरा काम है वो करता हूँ
0: जी।
1: जो कुछ खाली वक्त मिला उससे संगीत सुनता हूँ, जिससे माइंड दिन भर के काम से जो थकान आती है माइंड फ्रेश हो जाता है।
0: बहुत सुंदर,
1: यही मेरा रेगुलर दिन का काम है।
0: तो वैसे संगीत में क्या सुनते हैं आप श्याम भाई?
1: यही गीत सुनता हूँ, गोल्डन एरा फिल्म्स, मुकेश जी के, किशोर दा, रफी साहब और लता मंगेशकर जी, ये पुराने गाने मुझे बहुत पसंद है, आजकल के गाने इतने पसंद नहीं।
0: ओके, तो चलिए कोई गीत सुनवाइए हमारे दोस्तों को।
1: किशोर दा का गाया हुआ जीवन से भरी तेरी आंखें, सफर फिल्म का गाना।
0: बहुत प्यारा गीत, जीवन से भरी तेरी आंखें, किशोर साहब का गाया हुआ ये गीत। आइए दोस्तों सुनते हैं।

0: आप कुछ देर अगर दिन के दिन खत्म होते होते अगर संगीत में आप गुजारते हैं कुछ वक्त, तो आपका माइंड बड़ा फ्रेश हो जाएगा और दूसरे दिन काम करने को आपको बहुत ही उम्मीद आ जाएगी।
1: तो अब कौन सा गीत सुनवाएंगे श्याम भाई अपने सुनने वालों को?
0: भूपेंद्र जी का एक गाना मुझे बेहद पसंद है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।
1: वाह, बहुत सुंदर। कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। आइए दोस्तों, सुनते हैं भूपेंद्र जी का गाया हुआ ये प्यारा सा गीत।

0: श्याम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे श्रोताओं से आपने बातचीत की, अपनी पसंद के गाने हमें बताए, अपनी मन की बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू समीर जी, थैंक्स अ लॉट।

0: मंजिल मंजिल।
1: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। अनुशासन हमारे भीतर की प्रेरणा से उपजता है। अगर हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड हैं, उत्साहित हैं, तो हमारा डिसिप्लिन दूसरी सभी चीजों को संभाल लेता है। अब भले ही हमें ऊब हो जाए, थकान हो जाए या आलस हो जाए, अगर कोई काम करना है तो उसे करते रहना ही डिसिप्लिन कहलाता है। देखिए, किसी काम को करने की जरूरत, उसके पीछे के अच्छे कारण, उससे मिलने वाली संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, सभी हमें उस काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है ना? हमेशा के लिए यानी परमानेंट कुछ होता नहीं है। जीवन कई तरह के उतार चढ़ाव का एक चक्र है। यह एक तरीके का गोल समझिए, घूमने वाला झूला टाइप्स है। खुद पर या अपनों पर अगर बुरा समय आ जाए तो बड़ा दुख होता है। तब यह समझने की जरूरत होती है कि ये हमेशा नहीं रहेगा। नथिंग इज परमानेंट। कठिन समय के बीच एक दूसरे का हाथ थामे, साथ साथ निभाते हुए आगे बढ़ते रहें। आप देर तक पूरी तरह अकेले कभी रहते ही नहीं। आइसोलेशन में ज्यादा रह नहीं सकते आप। कहा जाता है कि नरक के रास्ते भी कट जाते हैं अगर हम चलना जारी रखें। मौकों की दस्तक तभी होती है भैया, जब हम दरवाजे बनाते हैं। वाह, देखिए, कोई बैठे बिठाए अच्छे मौकों को थाली में परोसकर हमें देता नहीं है। ऐसा बहुत ही कम होता है। इससे केवल हमारे समय, ऊर्जा और योग्यता का नुकसान ही होता है भाई। किसी और का इंतजार करने से बेहतर है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लें। यह बात भी ध्यान रखें कि हम अपनी किस्मत बनाते हैं, किस्मत हमें नहीं। बने रहिए आरजे समीर के साथ।

वो जरूर लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, वरना ये मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर तो ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए और कोई कागज रद्दी और कोई कागज गीता बन जाए।

कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया।

जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो परमात्मा का शुक्र अदा करना कि उसने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो तो सबके लिए अकेला ही काफी है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: कुछ लोगों को आपकी याद भैया तब आती है जब व्हाट्सएप पर चमत्कारी मैसेज भेजने के लिए 11 लोग ना मिल रहे हों।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

डूबता है तो पानी को दोष दे देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष दे देता है। इंसान भी बड़ा अजीब है, कुछ नहीं कर पाता तो किस्मत को दोष दे देता है।

बचपन में माँ कहती है तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, जवानी में बीवी कहती है आपको कुछ समझ नहीं आता, बुढ़ापे में बच्चे कहते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आता। सारी उम्र बीत गई, साला समझने की उम्र कौन सी है, यही समझ नहीं आता।

गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अपने हाथ में फोन हो तो खाना खाने में एक घंटा लग जाता है, और अपना फोन किसी दूसरे के हाथ में हो तो खाना खाने में 2 मिनट लगते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

एक ये जहां, एक वो जहां, दोनों जहां के बीच फासला बस एक सांस का। जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां।

तो दोस्तों रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम पर प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहिए रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम पर।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार है बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूँ, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे इस प्रोग्राम में जो शायरा हमारे साथ हैं, जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनका नाम है अलका जैन जी। बाकी की बातचीत हम अलका जी से करेंगे और उनकी गजलें सुनेंगे और उनके बारे में और भी कुछ जानेंगे। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
1: मैं
0: गुजारिश करूंगा कि अपना एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दें। आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं?
1: जी जी जी, मैं बिल्कुल बताती हूँ। सबसे पहले मैं भी अपनी तरफ से आपके सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उनका इस्तकबाल करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। मैं वैसे बेसिकली ग्वालियर मध्य प्रदेश की ही रहने वाली हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग मध्य प्रदेश में ही हुई है, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली वाले हैं, पुरानी दिल्ली के, तो वहां से थोड़ा सा उर्दू का टच मेरी जुबान में आया। तो मेरे ताया वैसे गजलों के शौकीन हुआ करते थे, तो वहीं से थोड़ा बहुत बचपन से गजलें सुनते सुनते कुछ, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि झुकाव उस तरफ होने लगा, थोड़ा सा उर्दू का भी जुबान पर असर आने लगा। उसके बाद शादी हुई मुंबई, तो अभी 28 साल से मुंबई हूँ। फिलहाल तो 2 साल से मैं बैंगलोर हूँ, मेरा बेटे की जॉब अभी बैंगलोर है, तो 2 साल से मतलब फ्रिक्वेंटली मुंबई और बैंगलोर आना जाना रहता है। और लिखने का सिलसिला अगर मैं कहूँ तो 30-35 सालों से लिख रही हूँ। पहले यही कहूंगी कि अनपेड कमर्शियल राइटिंग से मैंने शुरू किया था, मेरे भाई के ही न्यूज़पेपर से, और उनका न्यूज चैनल था, उसे शुरू की मैंने राइटिंग। बस धीरे धीरे स्कूल कॉलेजेस में भी अपना ही लिखना होता था, पोएट्री और प्लेज और परफॉर्म करना, उस वहां से वो थोड़ा थोड़ा चलता आया। लेकिन शायरी का जो शौक है वो बहुत पुराना नहीं है, अभी 12-13 साल ही हुए। क्योंकि पहले तो ये होता था, हम कुछ भी कहते थे, 2 लाइनें हमने की और तुकबंदी करके हमने मान लिया वो शेर है। लेकिन जो जब शायरी के बारे में पता चला कि कायदे से शायरी क्या होती है, बहर पर कैसे लिखी जाती है, उस तरह से लिखते हुए मुझे अभी 12-13 साल ही हुए हैं। छोटा मोटा मेरे अपने भाई का एक एनजीओ भी था, उसके साथ ही मैं काफी अरसे तक जुड़ी रही, उसमें भी मैंने काफी काम किया हुआ है। बस ये छोटी मोटी चीजें हैं।
0: जी बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि अपनी पहली गजल हमें सुनाए।
1: मैं अपनी पहली गजल एक सुनाना चाहूंगी कि मतलब जो देखा जाए तो महिलाओं के जो निस्वानी जो ख्यालात रहती हैं उनकी अक्कासी करती हुई गजल है, बाकी तो आप लोग ही तय करेंगे कैसी है।
0: इरशाद,
1: और इसका मतलब जो है सिर्फ मैं महिलाओं के लिए नहीं कहूंगी, ये हर शख्स के ऊपर जाता है
0: जी।
1: तो मतलब मुलायजा फरमाए कि जुबा से कुछ मेरी बे इख्तियार निकला है।
0: वाह,
1: जुबा से कुछ मेरी बे इख्तियार निकला है, तभी तो लफ्जों में दिल का गुबार निकला है।
0: वाह, बहुत खूब।
1: जुबा से कुछ मेरी बे इख्तियार निकला है, तभी तो लफ्जों में दिल का गुबार निकला है, और तुम्हारे फूलों ने जख्मी किए हैं हाथ मेरे
0: जी।
1: तुम्हारे फूलों ने जख्मी किए हैं हाथ मेरे, हर एक फूल में पोशीदा खार निकला है।
0: वाह खूब,
1: हर एक फूल में पोशीदा खार निकला है। बहुत शुक्रिया। और अगला शेर है कि खिजा में शाख पे एक पत्ता रह गया बाकी
0: जी।
1: खिजा में शाख पे एक पत्ता रह गया बाकी, हवा का झोंका कोई गम गुसार निकला है
0: जी।
1: हवा का झोंका कोई, बहुत शुक्रिया। और गए थे इश्क के आदाब सीखने जिनसे
0: जी,
1: गए थे इश्क के आदाब सीखने जिनसे, उन्हीं की बातों से दिल तार तार निकला है।
0: तार तार
1: निकला, उन्हीं की बातों से दिल तार तार निकला है, अब वो सुनते सुनते मेरी दास्तान रोने लगा
0: जी।
1: वो सुनते सुनते मेरी दास्तान रोने लगा, मेरा रफीक दिले बेकरार निकला है। मेरा रफीक दिले बेकरार निकला है, बहुत शुक्रिया। और उदास उदास है कलियां गुलों में मातम है, उदास उदास है कलियां गुलों में मातम है, यहां से कल ही हुजूमे बहार निकला है
0: जी बहुत खूब।
1: यहाँ से कल ही हुजूम बहार निकला है, और शेर आखिर और मक्ते का शेर भी मैं पढ़ूंगी कि नकाब की जो वकालत हमेशा करता था,
0: बहुत खूब।
1: नकाब की जो वकालत हमेशा करता था, उसी का चेहरा शरर दागदार निकला है। मेरा तखल्लुस शरर है।
0: जी जी जी।
1: तो वही मैंने वो हमारे इंट्रोडक्शन में मैंने नहीं बताया था कि मैं तखल्लुस शरर रखती हूँ।
0: जी।
1: नकाब की जो वकालत हमेशा करता था, उसी का चेहरा शरर दागदार निकला है। जुबां से कुछ मेरी पे इख्तियार निकला है, तभी तो नब्ज़ में दिल का गुबार निकला है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गजल, बेहतरीन गजल।
1: शुक्रिया।
0: बिल्कुल आपके ख्यालात और जो भावनाएं हैं जो हर इंसान को छू सकती हैं, उनके साथ इस गजल को पेश किया आपने, बहुत खूब।
1: शुक्रिया।
0: तो अलका जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनाएं।
1: तो मतलब मैं जिस दौर में गजलें सुना करती थी, वहां नंबर वन तो मेहंदी हसन और गुलाम अली ही हुआ करते थे, उसके बाद फिर हिंदुस्तान के जगजीत सिंह आते थे। लेकिन मैं आज तो मुझे बहुत पसंद हुआ करती थी मेहंदी हसन की गजल। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप सुनवाएं कि वो है कि मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे।
0: ओहो, क्या बात है, क्या बात है।
1: जी, जी।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गजल है साहब। अलका जी की फरमाइश पर हम लोग इसी गजल का लुत्फ उठाते हैं। आइए सुनते हैं मेहंदी हसन साहब की गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

0: बहुत ही खूबसूरत गजल। अलका जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा जिससे कि हम आपकी गजलों का मजा ज्यादा लें, लेकिन आपके बारे में जानना भी मतलब हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि आपके बारे में जाने।
1: और जब दर्शक आपके, श्रोता आपके सुन रहे हैं तो उनका अधिकार भी बनता है कि वो जिसको सुन रहे हैं वो कौन है।
0: जी। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन। तो अलका जी, यूं आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: बचपन से मेरा ये था कि मुझे सिविल जॉब में जाना था। मैंने उसके लिए अच्छी खासी तैयारी भी की और मैंने क्रैक भी किया था, पर वही है कि फैमिली ने कभी साथ नहीं दिया, उनको कभी नहीं था कि मुझे, मैं टिपिकल अग्रवाल फैमिली से हूँ, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली रहती है और मायके में जैन धर्म का पालन होता था मेरे
0: जी।
1: तो फैमिली कभी नहीं चाहती थी मैं जॉब में जाऊं। हाँ, मैं कोई बिजनेस में जाऊं, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं, इतना तक तो था
0: जी।
1: फिर वही है कि तो सब अपना शौक छोड़ना पड़ा और शादी करके बैठ गए।
0: ओके, ठीक है अलका जी, कई बार हमारी डेस्टिनी हमें कहीं किसी और तरफ ले जाती है और फिर जो होता है वो अच्छा ही होता है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन
1: हाँ, एक्चुअली मैं लेखन में शायद मैं उतना आगे नहीं जाती क्योंकि वो मायका छूटता तो शायद ही लेखन छूट जाता या मैं जॉब में जाती तो उस, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ शौकिया किया करती थी, अपने लिए ही लेखन किया करती थी या भैया के न्यूज़पेपर या उनके चैनल के लिए किया करती थी। थोड़ा बहुत कभी किसी अपने शौक के लिए कुछ लिखा, किसी न्यूज़पेपर में भेज दिया, किसी पत्रिका में भेज दिया, वो छाप देते तो हम उतने में खुश हो जाते थे। अब ये और बात है कि काफी अच्छी पत्रिकाओं में मैं छपी उस वक्त, उस दौर की, और हमारे ग्वालियर के जितने भी अच्छे न्यूज़पेपर रहे हैं उनमें भी मैं छपी हुई हूँ, और भी जहां जहां भी मैंने भेजा सचमुच मुझे कहीं से निराशा नहीं मिली, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो मेरा कलाम कि हम नहीं छापेंगे। तो वो चीज मतलब अंदर से कहीं बड़ी खुशी देती थी, पर वही है धीरे धीरे उस चीज को छोड़ना पड़ा क्योंकि जब मैं सिविल जॉब के लिए तैयारी कर रही थी तब पढ़ाई का लोड बहुत ज्यादा था, तब आप अपने लेखन को वक्त नहीं दे सकते उस दौर में
0: जी।
1: तो उस समय भी काफी छूट गया था मेरा
0: जी। बेहतरीन बेहतरीन
1: जी।
0: तो अलका जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें एक गजल और सुनाएं।
1: ये भी मैं थोड़े निस्वानी लहजे की सुनाऊंगी, मतलब महिलाओं के लिए ही है ये पूरी तरह से
0: जी।
1: और हर कदम वक्त की ठोकर के अलावा क्या है?
0: बहुत खूब।
1: हर कदम वक्त की ठोकर के अलावा क्या है? जिंदगी ख्वाबों के मंजर के अलावा क्या है? हर कदम वक्त की ठोकर के अलावा क्या है? जिंदगी ख्वाबों के मंजर के अलावा क्या है? हम उसे जख्मों का मदावा भी कराना है, मगर मदावा कहते हैं इलाज ट्रीटमेंट को। उसे जख्मों का मदावा भी कराना है, मगर हैसियत मेरी रफूगर के अलावा क्या है? उसे जख्मों का मदावा भी कराना है, मगर हैसियत मेरी रफूगर के अलावा क्या है?
0: क्या बात है।
1: और ताजो दस्तार मुबारक हो तुम्हारे सर को, ताजो दस्तार मुबारक हो तुम्हारे सर को, मेरे सर के लिए पत्थर के अलावा क्या है?
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ताजो दस्तार मुबारक हो तुम्हारे सर को, मेरे सर के लिए पत्थर के अलावा क्या है? और तुम तो इस शहर को कहते थे मोहब्बत का नगर, तुम तो इस शहर को कहते थे मोहब्बत का नगर, अब खंडर हो चुके मंजर के अलावा क्या है?
0: बहुत खूब।
1: अब खंडर हो चुके मंजर के अलावा क्या है? मैंने चेहरे पे सजा रखे हैं खुश रंग कई
0: जी,
1: मैंने चेहरे पे सजा रखे हैं खुश रंग कई, कल्ब की तह में मेरे डर के अलावा क्या है? कल्ब कहते हैं दिल को हृदय को
0: जी।
1: और मैंने चेहरे पे सजा रखे हैं खुश रंग कई, कल्ब की तह में मेरे डर के अलावा क्या है? और अब तलक रिस रहा है खून मेरे कानों से, अब तलक रिस रहा है खून मेरे कानों से, आपकी गुफ्तगु निश्तर के अलावा क्या है?
0: बेहतरीन।
1: आपकी गुफ्तगु निश्तर के अलावा क्या है? और शेर आखिर की जान लेता नहीं, जीने भी नहीं देता मुझे
0: जी,
1: जान लेता नहीं जीने भी नहीं देता मुझे, इश्क टूटे हुए खंजर के अलावा क्या है?
0: क्या बात है क्या बात है।
1: इश्क टूटे हुए खंजर के अलावा क्या है? हर कदम वक्त की ठोकर के अलावा क्या है? जिंदगी ख्वाबों के मंजर के अलावा क्या है?
0: बहुत खूब। बहुत खूब, बेहतरीन,
1: बहुत शुक्रिया समीर जी, बहुत शुक्रिया।
0: बहुत ही प्यारी गजल, बहुत ही संजीदा और विचारों से भरी हुई, सोचने पर मजबूर कर देने के लिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: तो अलका जी, मैं आपसे अब गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने पसंदीदा गजल गायक की एक और गजल हमें बताएं।
1: एक्चुअली एक फिल्म बाजार की एक गजल है, दिखाई दिए यूं। ये गजल भी पता नहीं क्यों मेरे दिल के बहुत करीब है, शायद शहरयार साहब की ये गजल है।
0: जी जी जी, बिल्कुल बेहतरीन,
1: अगर ये आप सुना सकें तो। जी
0: जी बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर। आइए दोस्तों, अलका जी की फरमाइश पर, अलका जी के हुक्मों पर इसी गजल को हम लोग सुनते हैं।

0: बहुत ही प्यारी प्यारी गजल। अलका जी प्रोग्राम
1: छुट्टी में बहुत खूबसूरत गजल है ये।
0: जी जी सही फरमाया आपने। आगे बढ़ते हैं अलका जी, और फिर से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में आपको सबसे अच्छा तोहफा आज तक क्या मिला और किसने दिया?
1: सबसे अच्छा तोहफा, मतलब तोहफे सभी दिल के करीब होते हैं, और जब से सामाजिक कार्य में और ये इनमें आई हूँ तो जो सम्मान मिलते हैं मेरे ख्याल से वो सबसे बड़े तोहफे हम लोगों के लिए होते हैं। एक तरह से मैं ये मानती हूँ कि वो हमारे लिए सम्मान सिर्फ तोहफे ही नहीं होते, एक तरह से हमारे कामों के लिए अल्प विराम होता है कि अब तक आपने जो किया उसके लिए ये यहाँ तक हमने सम्मानित आपको किया, अब इसके आगे आप जो करेंगे उसके लिए आपको फिर वो संस्था की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर हो जाती है कि भाई आप उसने आपको सम्मानित किया है तो आप उसको नीचा ना दिखाएं, अपने मायार को बना करके रखें। मेरे ख्याल से मैं जो मिले हुए सम्मान है उन्हें ही सबसे बड़ा तोहफा मानती हूँ, बाकी जिंदगी में तो सभी लोग कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, और अपनों के दिया हुआ कुछ भी हो सभी कुछ दिल के करीब ही होता है, तो मैं सम्मानों को सबसे बड़ा तोहफा मानती हूँ जो अचानक से ही मुझे मिलने शुरू हो गए, क्योंकि मेरा कभी भी मंचों पर आने का इरादा नहीं था। मैंने बताया ना मेरा कहीं कहीं छप जाता था, मैं उतने में ही खुश थी, और वो तो किसी ने मुझे चैलेंज कर दिया कि आप गजल कभी नहीं कह सकती, तो उसी जिद में मैंने गजल कहना सीखा, और बस यह है कि अपने भावों की अभिव्यक्ति मुझे आती थी क्योंकि मैं इतने सालों से लिख रही थी, तो वो एक पैटर्न जो होता है जो बहर वजन में जो कहना होता है बस उतना मुझे सीखना था, तो मेरी उसमें व्याकरण का दोष कभी भी नहीं रहा, बस वो मैं माँ सरस्वती का ही इसको आशीर्वाद बोलेंगे कि जब भी मुझे लिखना कुछ भी होता है, आज भी मैं कहानियां भी लिखती हूँ आर्टिकल भी लिखती हूँ, तो या तो कहे कि एमपी में मेरी पढ़ाई हुई है और हमने स्कूल कॉलेज के अंदर जाकर के पढ़ाई की है, कॉलेज के बाहर पढ़ाई नहीं की है, तो इसलिए वो लेखन में व्याकरण का दोष बहुत कम होता है, नहीं तो सबसे गंदा वही लगता है कि आप अपने आप को साहित्यकार कहते हैं और उसमें आपकी व्याकरण का दोष होता है।
0: जी जी जी,
1: तो बस यही छोटी मोटी चीजें हैं।
0: आपने
1: शायद आपका सवाल छोटा होता है, जवाब में बहुत बड़ा दे देती हूं।
0: अब दरअसल होता ये है अलका जी की सुनने वाले ऑडियंस जो है वो दरअसल आपको सुनना चाहते हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ, एक सवाल पूछता हूँ और फिर वो आपको सुनना चाहते हैं कि आप कौन हैं।
1: एक्चुअली प्रोग्राम आपका है, आप सजाते हैं प्रोग्राम, तो हम लोग आते हैं तो आप भी उतने ही अहम है जितने हम लोग हैं।
0: अजी साहब, मुझे तो ऊपर वाले ने एक नुमाइंदा बनाया है कि लो जाके चिट्ठियां बांटो और इनकी चिट्ठी उन तक पहुंचा दो, बस वही काम करने में लगा हुआ हूँ मैं तो।
1: जी जी जी,
0: चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं अलका जी, और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि एक प्यारी सी गजल और सुनाइए हमें।
1: जी, मैं एक गजल के चार पांच शेर ही सुनाती हूँ उस गजल के।
0: जी,
1: तेरी अंजुमन से उठकर बड़ी दूर आ गए हम।
0: जी,
1: तेरी अंजुमन से उठकर बड़ी दूर आ गए हम, कहीं तुझ में हम है बाकी, यू गए तो क्या गए हम।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: तेरी अंजुमन से उठकर बड़ी दूर आ गए हम, कहीं तुझ में हम है बाकी, यू गए तो क्या गए हम। और तुझे भूलने का दावा हमें तब लगा है झूठा।
0: जी,
1: तुझे भूलने का दावा हमें तब लगा है झूठा, सुना नाम जब तुम्हारा वही शक पका गए हम।
0: शक पका गए हम, बहुत खूब।
1: सुना नाम जब तुम्हारा वही शक पका गए हम, और तेरा हाथ थाम कर ही हमें चलने की थी आदत।
0: जी,
1: तेरा हाथ थाम कर ही हमें चलने की थी आदत, चले दो कदम जो तुम बिन वही लड़ खड़ा गए हम।
0: वाह,
1: चले दो कदम जो तुम बिन वही लड़ खड़ा गए हम, या हवा को तोहमतें दें या दियो पे रखते पहरे।
0: जी,
1: या हवा को तोहमतें दें या दियो पे रखते पहरे, जिन्हें आंधियों का डर था वो दिए बुझा गए हम।
0: क्या बात है।
1: जिन्हें आंधियों का डर था, बहुत शुक्रिया, वो दिए बुझा गए हम, और सरे राह हम खड़े हैं हुए दोनों हाथ खाली।
0: खाली,
1: सरे राह हम खड़े हैं हुए दोनों हाथ खाली, कहीं कारवां लुटाया कहीं धोखा खा गए हम। कहीं कारवां लुटाया कहीं धोखा खा गए हम, तेरी अंजुमन से उठकर बड़ी दूर आ गए हम।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत ही शानदार तरीके से लफ्जों के साथ खेलते हुए आपने बड़े ही तीक्ष्ण अंदाज में बड़े चुभते हुए से तीर उन शख्सों की तरफ डाले जिन्होंने यूं हमें परेशान किया। मजा आ गया साहब, उन्हें पता भी ना चला होगा और बहुत अंदर तक घायल हुए होंगे। क्या बात है, क्या बात है। मुझे आप शायरों की इसी बात से थोड़ी सी जलन होती है कि आप लोग शब्दों से खेलना खूब जानते हैं।
1: मतलब शायरी शब्दों से खेलने का ही काम है। अब दो मिसरों में हमें पूरी एक कहानी बतानी होती है, अगर वो नहीं खेलेंगे तो कैसे एक पूरा किस्सा बयान होगा दो मिसरों में।
0: सही कहा आपने, सही।
1: मतलब शेर की जो पंक्तियां जो होती हैं उन्हें मिसरे कहा जाता है। तो
0: जी, जी, जी, तो अलका जी, अपने किसी पसंदीदा गायक की, गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
1: आप गुलाम अली साहब की वो हम तेरी शहर में आए हैं सुना सकते हैं क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल साहब, बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत गजल।
1: जी, जी, जी।
0: हम तेरे शहर जी, में आए हैं, अमेजिंगली ब्यूटीफुल गजल। आइए दोस्तों सुनते हैं गुलाम अली साहब की गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

0: अलका जी आगे बढ़ते हैं
1: और जी जी जी
0: एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि
1: जी
0: आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और क्यों?
1: हमेशा से पता नहीं क्यों मुझे व्हाइट कलर को लेकर बड़ा ऑब्सेशन रहा है
0: जी।
1: व्हाइट कलर के मेरे पास हमेशा से बहुत सारे कपड़े रहे हैं और इस वक्त भी व्हाइट कलर के ही कपड़े पहन करके बैठी हुई।
0: क्या बात है, लेकिन क्यों?
1: पता नहीं मुझे बहुत मतलब, या तो ये है कि व्हाइट कलर को मेंटेन बहुत करना पड़ता है और थोड़ा सा मेरा है कि मैं वर्गो हूँ तो थोड़ी परफेक्शनिस्ट से ज्यादा हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: इसलिए मुझे व्हाइट कलर पे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। लाइट कलर और भी मुझे पसंद आते हैं, लाइट कलर ही पसंद आते हैं वो।
0: जी जी जी,
1: क्योंकि उन्हें संभालना पड़ता है और वो एक रिचनेस दिखाते हैं एक्चुअली, मुझे लगता है लाइट कलर और व्हाइट कलर।
0: जी जी, बस यही तो जानने की इच्छा थी कि अगर किसी रंग को आप पसंद करते हैं तो भला क्यों। और दरअसल हमारे कुदरत में इतने सारे रंग हमें मिले हैं, कुदरत ने हमें दिए हैं और हम उन रंगों को अलग अलग तरीकों से अपनाते हैं, प्यार करते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन चला जाता है। मैं अक्सर व्हाइट के साथ बहुत सारे रंगों को कंबाइन करके पहनती हूँ
0: जी,
1: वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। मेरा अपना तरीका है वो अलग अलग ड्रेसेस क्रिएट करने का, दुपट्टा किसी का डाल लिया, बॉटम किसी का डाल लिया
0: जी,
1: तो उस तरह आप एक ही ड्रेस से आप अलग अलग चीजें ड्रेसेस बना सकते हैं।
0: बहुत खूब। तो अलका जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल और हमें सुनाएं।
1: जी जी जी, ये मैं आपको सुनाती हूँ ऐसे इसी से कुछ मिलते जुलते मिजाज की गजल है जो हमने अभी सुनी है
0: जी।
1: और मेरे बदल के सहारे तलाश मत करना
0: जी,
1: मेरे बदल के सहारे तलाश मत करना और शिकस्ता इश्क के टुकड़े तलाश मत करना
0: जी। बेहतरीन।
1: मेरे बदल के सहारे तलाश मत करना, शिकस्ता इश्क के टुकड़े तलाश मत करना, ये गुजरी रात के आंसू है फूलों के रुख पर
0: जी।
1: ये गुजरी रात के आंसू है फूलों के रुख पर, गुलों पे ओस के कतरे तलाश मत करना।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया। अभी जुबान में मेरी जरा हरारत है, अभी जुबान में मेरी जरा हरारत है, तू हर्फ हर्फ शरारे तलाश मत करना।
0: भाई क्या बात है जी,
1: तू हर्फ हर्फ शरारे तलाश मत करना, सुरूरे हिज्र अभी तो चढ़ा है सर पे मेरे
0: जी,
1: सुरूरे हिज्र अभी तो चढ़ा है सर पे मेरे, मिलो तो वसल के मौके तलाश मत करना।
0: क्या बात है,
1: मिलो तो वसल के मौके तलाश मत करना, उतर गए हो दिलो जानो जहन में मेरे
0: जी,
1: उतर गए हो दिलो जानो जहन में मेरे, मेरी उदासी के गोशे तलाश मत करना,
0: तलाश मत करना जी,
1: मेरी उदासी के गोशे तलाश मत करना, जो कह चुकी हूँ मैं बस उतनी मेरी बातें हैं
0: जी,
1: जो कह चुकी हूँ मैं बस उतनी मेरी बातें हैं, तू गुफ्तगू में इशारे तलाश मत करना।
0: क्या बात है जी,
1: तू गुफ्तगू में इशारे तलाश मत करना, और सुनोगे जिस्म की बोली तो जिस्म बोलेगा
0: जी,
1: सुनोगे जिस्म की बोली तो जिस्म बोलेगा, वहां पे रूह के हिस्से तलाश मत करना।
0: वाह,
1: वहां पे रूह के हिस्से तलाश मत करना। और इस गजल का आखिरी शेर की, जो तुमको साथ मेरे चलना है तो आ जाओ,
0: आ जाओ राइट,
1: जो तुमको साथ मेरे चलना है तो आ जाओ, यू बेसबब ही बहाने तलाश मत करना, यू बेसबब ही बहाने तलाश मत करना, मेरे बदल के सहारे तलाश मत करना, शिकस्ता इश्क के टुकड़े तलाश मत करना।
0: बहुत खूब, बहुत ही खूब,
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत ही संजीदा गजल, बिल्कुल दिल को छू लेने वाली और बहुत ही मैसेज से भरपूर, बहुत प्यारी गजल।
1: बहुत शुक्रिया
0: अलका जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातचीत की, आपके बारे में जाना, आपकी बेहद बेहद संजीदा और खूबसूरत गजलें हमने सुनी। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि हम आगे भी आपकी गजलें सुनेंगे। इंशाल्लाह बहुत सारे और भी ऐसे प्रोग्राम होंगे जहां पर हम आपको इनवाइट करेंगे, आपके साथ बातचीत होगी
1: जी बिल्कुल,
0: और आपकी और गजलें भी हम सुनेंगे। तो चलते चलते बस अपने पसंदीदा गजल गायक की कोई एक और गजल हमें बता दीजिए जो हम अपने सुनने वालों को सुनवा सकें।
1: वही मशहूर जमाना और किसी जमाने में हर जुबान पर चढ़ी हुई थी, चुपके चुपके राज, यही सुना दीजिए।
0: बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा पसंद की जाने वाली ये गजल
1: जी,
0: चुपके रात दिन। आइए दोस्तों सुनते हैं, और अलका जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए।

दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें। खेतीबाड़ी कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। और श्रोता साथियों, हमारे किसान साथी बहुत अच्छी तरीके से होंगे और हम आशा करते हैं ऐसी धूप में हमारे किसान साथी खास तौर पर इस गर्मी का मजा ले रहे होंगे। लेकिन किसान साथियों, कुछ बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अपना अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा और साथ साथ में कुछ बातें हैं गर्मियों के मौसम में किस तरीके से हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, हम समय समय पर इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में बातचीत करते चले आ रहे हैं।
2: बिल्कुल साथियों, और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं किस तरह से प्राकृतिक खेती करके हमारे किसान साथी अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, साथ में लागत को कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और खास तौर पर सरकारें भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं। और हमारे किसान साथी, यदि आपको ज्यादा लगता है कि हमें अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो केबीके झाबुआ में खुला हुआ है, वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में कृषि विज्ञान केंद्र भी खुला हुआ है और कृषि विभाग भी वहां पर उपस्थित है, आत्मा भी वहां पर है। तो सभी विभागों में जाकर संपर्क करना होगा और साथ में हमें जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हम तो बताते ही हैं कि हमारे किसान साथियों की आय को हम किस तरीके से दुगनी कर सके। सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है, और वहां पर अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो रहती हैं उसका भी हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं। लेकिन किसान साथी, सबसे पहले हमारे किसानों से कहना है कि इस मौसम में, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में किसान भाई पहले अपने खेत की गहरी जुताई अवश्य कर लें, क्योंकि गहरी जुताई हमारे किसान साथी कर लेंगे तो हमारे किसान साथी जैसे ही पानी गिरेगा तो अपनी जो जायज की फसल है उसको बोकर अपनी दूसरी फसल भी हमारे किसान साथी ले सकते हैं। और साथ साथ में अपने किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि मिट्टी परीक्षण के साथ साथ हमारे किसान साथी बागवानी भी इस मौसम में कर सकते हैं और साथ साथ में अपने पेड़ पौधे भी हमारे किसान साथी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपने छोटे छोटे बागवानी लगाकर, किचन गार्डन लगाकर अपने पर्यावरण को भी वो बचा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती करके अपनी आय को बढ़ोतरी कर सकते हैं। और जो प्राकृतिक खेती की अगर साथियों बात करें तो प्राकृतिक खेती से क्या होता है कि लागत कम लगती है इसमें और उत्पादन तो आपको पता ही है कि अच्छा खासा रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत उत्पादन हमारे पिछली फसल से कम हुआ है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारें इसके लिए अधिक प्रयास कर रही हैं, केवीके इसमें प्रयास कर रही है। उन्नतशील जो बीज रहते हैं उनका भी चयन आपको करना चाहिए, साथ साथ में कम पानी वाली फसलें, क्योंकि झाबुआ की अगर बात करें तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो हमारे किसान साथी किस तरीके से, पथरीला इलाका है, किसान साथी किस तरीके से उस जमीन में कौन सी प्रजाति के अपने बीज लगा सकते हैं, बो सकते हैं, और जिसमें पानी भी कम लगे और लागत भी कम लगे और उत्पादन अच्छा खासा हो, तो ये छोटी छोटी बातें हमारे किसान साथियों को बेहद जरूरी है। साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम में तीन सिगमेंटों पर हम बात करने जा रहे हैं। पहला होगा कि आपको पता है कि प्राकृतिक खेती क्या है, इसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी भी कुछ बताएंगे। साथ साथ में प्राकृतिक खेती के साथ साथ में पशुधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से देख रेख इस वर्षा वो क्या नाम गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। साथ में एक सफल किसान की कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं, बाहर के स्टेट का सफल किसान हो लेकिन उनकी कहानी को सुनकर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं और उस बदलाव से, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि आय किस तरीके से दुगनी हो रही है किसान साथियों की, तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो रहते हैं, जैसे कि हम इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि हमारे जो किसान एक उन्नतशील किसान है जिन्होंने चावल की अच्छी प्रजाति का उत्पादन करके पैकिंग कर उसको बाजार में बेचा है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे हमारे किसान साथी कर सकते हैं, क्यों लाभदायक है प्राकृतिक खेती। इससे पहले हम लेते हैं एक छोटे से विराम को, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
3: Yeah.

Thank you.

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: बहनों, जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की, तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। बता दें, इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि। जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी। तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
2: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो। ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं। कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है, जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है। लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है। एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है, और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना। इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए, जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में, विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में, मिट्टी के सूख कर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है। एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है। भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है, जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है।
3: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है। मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की। राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरी हार्दिक शुभकामना। देश के एक बड़ा भाग में, विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में, मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है। फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है, जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, इट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 मिलियन तक बढ़ चुकी होगी। भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगन प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचना को बचाई जा सकते हैं।
2: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
3: हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, स्वारंगधर की लिखी उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृत कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करें और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करें। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
2: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
4: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष सांग का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेष सांग में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो, जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफ़ी मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट, कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं, उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए ये भूमि, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफ़ी प्रभावशाली रहेगा।
5: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी, पूज्य स्वामी काड़ सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मिति हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने
6: विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है, इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र, ऐसे समग्र लोगों, समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेषांक की निर्मिति की गई है।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।
8: फिर से सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में और आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
7: और साथियों, अभी आपने प्राकृतिक खेती के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुना और इस जानकारी सिर्फ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के माध्यम से आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और इसका सहयोग विशेष तौर पर KBK झाबुआ द्वारा किया जा रहा है और साथ साथ में कृषि विभाग द्वारा इसका सहयोग इसमें किया जा रहा है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है पशुधन, और इसमें आज हम जानेंगे कि किस तरीके से पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और खासतौर पर गर्मियों में किस तरीके से देखरेख करना चाहिए, पशुपालन को लेकर क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में आइए सुनते हैं इस प्यारे से रिपोर्ट को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
8: और आपके आरजे वर्षा के साथ में, सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: पशुपालन शुरू से ही किसानों की समृद्धि का प्रतीक रहा है। पहले के समय में जिसके पास जितने ज्यादा पशु वो उतना बड़ा किसान या पशुपालक माना जाता था। हालांकि आज तस्वीर कुछ अलग है। आज समृद्धि का आकलन पशु की नस्ल से होता है। समय के साथ पशुपालन के तौर तरीके बदल रहे हैं। किसान कम पशुधन में भी बेहतर मुनाफा कमाने के तरीके आजमा रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशु के आहार, आवास से लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
9: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजनाएं के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है, तो उसमें ये दिया जाता है कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, एसएचजी से हो या ग्रुप 8 के कंपनीज हो, तो ये सारे चीजें हैं अगर इन कैटेगरीज में होते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे वो खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं या उसके साथ दही या और डेयरी प्रोसेसिंग आइसक्रीम बना सकते हैं।
2: साथ ही इनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं गोबर का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजें बनाने में कर रही हैं, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है।
9: मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गए, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
2: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
2: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में पशु धन पर चर्चा को सुना और साथ साथ में जाना किस तरीके से इस गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपने पशुपालन का ध्यान कर सकते हैं, यानी पशुओं का ध्यान कर सकते हैं और कितनी महत्वपूर्ण है। खासतौर पर पशु से जो हमें दूध मिलता है, छाछ मिलता है, मट्ठा हम खाते हैं, साथ साथ में जो गोबर से हम लोग खाद बनाते हैं वो हमारे खेती के लिए अमृत होता है। क्योंकि अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो पशु धन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा योगदान पशु धन का रहता है। खासतौर पर देखा जाता है जब हम गर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाते हैं तो उसमें गोबर की खाद का बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो गोबर के खाद से हम अपने खेती में फिर से अब बदलाव कर सकते हैं और फिर से जो हम रासायनिक खेती करते चले आ रहे थे अब उसको बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट जिसमें सफल किसान की कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं।
8: जी हाँ, इससे पहले हम सुन लेते हैं एक गीत को, क्योंकि देखिए बातचीत हमारी और आपकी यूं ही चलती रहेगी, ये सिलसिला कार्यक्रम का यूं ही चलता रहेगा आपके साथ में, लेकिन कुछ मनोरंजन के साथ में। तो आइए यहाँ पर सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत।

Yeah.

0: बड़ा तुम्हारे ही थोड़ा सा।
1: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है, हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
2: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग आगे आ रहा है और अपने छोटे छोटे उद्यमों से अन्य सारी बाधाओं को दूर कर रहा है। ऐसे ही एक उद्यमी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली के आहार मेले में, जहां वो अमल फार्म के नाम से कई उत्पाद बेच रहे हैं जिसमें जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग यानी जीआई टैग पा चुकी उपज भी शामिल है। उनके उत्पादों की लिस्ट तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना, काजू, मसाले, दालें, सत्तू। भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है। किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी। अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं जो खास पहचान बन चुके हैं। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं।
3: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कहने का मतलब है कि अब हम जाने वाले हैं इस कार्यक्रम से, लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें हैं जो मनीष जी आपके साथ साझा करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने तीन सेगमेंट में कार्यक्रम को सुना है, यानी कि पहले हमने जाना कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए कितनी लाभदायक है और क्यों हमें ये करनी चाहिए, इससे हमारे प्रकृति पर कितना असर पड़ सकता है ये भी हमने जाना है। दूसरा हमारा सेगमेंट था पशुपालन, क्योंकि हमारे किसानों की रीढ़ की हड्डी पशु होते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस गर्मी के मौसम में हमें अपने पशुओं का ध्यान किस तरीके से हम रख सकते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। अगला यानी कि तीसरा और आखिरी हमारा सेगमेंट था सफल कहानी। श्रोताओं, सफल कहानी कहीं की भी हो, किसी भी जगह की हो, बस जरूरत है उस कहानी को सुनने के बाद कुछ चीजें सीखने की कि जिस तरह से वो किसान सफल हुआ है उस तरह से आप अपने क्षेत्र में भी काम करके, मेहनत करके, लगन से खेती बाड़ी करके एक सफल किसान बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मनीष जी हमारे साथ क्या साझा करने वाले हैं।
4: हम अपने किसान साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत बताने वाले हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी अपने पशुओं का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और हमारे किसान साथी अभी जो खाली खेत पड़े हुए हैं उसमें ग्रीष्मकालीन जो मूंग रहती है उसका भी हमारे किसान साथी बोनी कर सकते हैं, अच्छा समय है। साथ साथ में अगर बागवानी की बात करें तो विशेष तौर पर सरकारें इसके लिए प्रयास कर रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले की बात की जाए तो झाबुआ जिले में उबड़ खाबड़ जमीन है, साथ साथ में पथरीला इलाका है, पानी रुकता नहीं है, तो ऐसे में क्या करें किसान, क्योंकि किसानों को जागरूक होने की अब आवश्यकता है। कृषि विभाग की ओर से जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन की स्कीम्स हो या पाइप वाली स्कीम्स हो या फिर टपक पद्धति वाली स्कीम्स हो, यानी उनको किस तरीके से एक पौधे में किस तरीके से पानी लगाया जाता है, वो सारी जानकारी या स्कीम्स गवर्नमेंट की जो चलाई जाती है, तो उसके लिए आपको झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में

0: जाकर हमारे किसान साथी KVK है, यानी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग भी है, साथ साथ में आत्मा का भी ऑफिस बना हुआ है, वहां पर जाकर संपर्क करना चाहिए। और साथ साथ में हमारे किसान भाइयों को अभी से बीजों का चयन करना चाहिए कि कौन सी प्रजाति का बीज हमें अपने खेतों में लगाना है, कैसे लगाना है, कैसी पद्धति होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर तो वहां पर चलता नहीं है। ऐसे में किसान साथी जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वहां पर ट्रैक्टर चलाया जाता है, और जहां पर पथरीला इलाका है वहां पर हल से हमारे किसान साथी खेती करते हैं। तो विशेष तौर पर हमारे किसान साथियों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और ऐसे में हमारे किसान साथी तालाब का बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन चल रहा है, जगह जगह तालाब गहरीकरण हो रहा है, जहाँ पर तालाब संरक्षण की अगर बात करें, तालाबों को बचाने की अगर बात करें, तो वहाँ पर सरकार प्रयास कर रही है, तालाब गहरीकरण करवाया जा रहा है, खुदवाए जा रहे हैं नए तालाब, चेक डैम बनाए जा रहे हैं पानी को रोकने के लिए। तो ऐसे में किसान साथी जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है वहां पर समतलीकरण करा लें, और साथ साथ में तालाब भी अगर जहां अगर आपके संरक्षित नहीं है वहां पर तालाब की अच्छी व्यवस्था कर लें, जिससे बरसात का जो पानी रहता है वो रुक सके और आपकी जो फसलों में नमी बनी रहती है उस वजह से आपको नमी बनी रहेगी और आपकी उत्पादन हमारे किसान साथियों की अधिक होगी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दी है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथी इस जानकारी का सही इस्तेमाल भी करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हैं लेकिन आपके पास और कमी है जानकारी की, तो आप हमारे रेडियो से संपर्क कर सकते हैं, यानी रेडियो टांडिया भील से आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर होगा
0: 94251436303। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
1: तो साथियों, अब हमारा यानी के इस कार्यक्रम का समय होता है जाने का, क्योंकि अगले कार्यक्रम में यानी के फिर से हम आपसे मिलेंगे एक नई और जानकारी के साथ। तो ऐसे ही सुनते रहे रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
0: अपना रेडियो अपनी बात है। तो आपके आरजे मनीष
1: और आपके आरजे वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।
2: ये आवाज है झाबुआ की, और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और कैसे हैं हमारे किसान साथी? हाँ, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी काफी अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। अब वो खेती किसानी से बिल्कुल फ्री हो गए हैं और हमारे किसान साथियों के मन में कई सवाल चल रहे होंगे, क्योंकि खेती करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जैसा कि दुकानदारों के पास जो दुकानदारी का काम रहता है और उनको दिन भर चिंता लगी रहती है कि अब हम क्या करें, कैसे बढ़ाएं, कैसे आगे करें, ऐसे ही हमारे किसान साथी रहते हैं कि जिनको चिंता बनी रहती है कि अब क्या करें। हमारी फसल तो ओके घर पर तैयार होकर घर पे आ गई है, आगे चलकर हम क्या करें। तो उन हमारे किसान साथियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि अगर झाबुआ जिले की अगर बात करें तो हमारे किसान साथियों ने जैसे कि चना हुआ, साथ साथ में सरसों भी बोते हैं और गेहूं की फसल मुख्य रूप से बोई जाती है। और ऐसे में हमारे किसान साथियों के पास अब जो समय रहता है, अब वो क्या करते हैं कि घर पे फ्री बैठे होते हैं। तो उन किसान साथियों को हम एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि ये सलाह आप हमारे किसान साथियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे जो किसान साथी जिन्होंने चना या फिर सरसों का उत्पादन किया है, चना हुआ, बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि चूंकि पहाड़ी इलाका है तो कम खेती होती है, मटर हुआ, तो ऐसे फसल जो हम उगाकर बाजार में बेचते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि किसान को क्या पड़ी रहती है कि जैसे ही फसल हमारी उगे और जैसे ही फसल उगके घर पर आए और हम सोचते हैं कि हमें जो हमारा कर्ज पूरी हमने साल में खेती में लगाया था उस कर्ज को निपटाने के लिए उनको तत्काल प्रभाव से वो खेती की जो फसल हुई है उसको बेचना पड़ता है। लेकिन किसान साथियों, कभी आपने सोचा है कि इसको थोड़ा रोककर यदि हम बेचें, दूसरा यदि हम इन जैसे चना अपने क्षेत्र में होता है, झाबुआ जिले की बात करें, चना होता है तो चने की दाल बनाकर यदि हम पैकिंग कर और हम अपने किसान साथी बाजार में बेचें। अब उनको बाजार में बेचने के लिए हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि बाजार में कैसे बेचेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा चूंकि तरह तरह की योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, और जैसा कि हमने जिक्र भी किया था कि हमारे किसान साथियों की आमदनी किस तरीके से दुगनी हो, तो ये छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि हो सकती है। सबसे पहले कि वो पैकिंग कर बेच सकते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो बनाई जाती है उसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे किसानों का संघ जो बना रहता है उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी बेच सकते हैं अपनी चीजों को, यानी फसल को पैकिंग कर उसको बेच सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, जिन श्रोता साथियों के पास जमीन है, सिंचाई का पर्याप्त व्यवस्था है, तो वो सब्जियों का व्यवसाय कर सकता है। सब्जी, क्योंकि अब सीजन है जायज की फसल का, जायज की फसल में हम क्या करते हैं सब्जी लगाते हैं, और हम खास तौर पर देखते हैं कि भिंडी का मौसम भी चल रहा है, भिंडी इस मौसम में लगा सकते हैं, साथ साथ में जो हमारी ककड़ी आती हैं उसको भी हम लगा सकते हैं। तो ये सब्जियां जो है वो हमारे किसान साथी जिनके पास कम जमीन है, साधन है सिंचाई का, ड्रिप पद्धति से हम उसको उगा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। अब इसके लिए किसान साथी सोच रहा होगा कि कैसे बनेंगे, तो इसके लिए जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे, साथ साथ में किस तरीके से नए पद्धति से हमारे किसान साथी झाबुआ जिले में अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं, यानी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इस पर भी हम विषय विशेषक से सलाह लेकर आप तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। चूंकि धीरे धीरे बात काफी बड़ी हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे किसान साथियों को अब मन हो रहा होगा कि गीत संगीत हो जाए, तो जरूर सुनवाते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो भील टांटिया 90.8 FM। आप लोग रेडियो अपनी बातें।

મારા ભાઈ, મારી બહેન, મારા કાકા, મારી કાકી.

0: रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आप रेडियो आपड़ी बातें। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने इस प्याले से भील गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो विषय पर बातचीत करने के लिए विषय विशेषज्ञ तैयार है। आइए इनकी बात को हम सुनते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आमंत्रण के लिए और मुझे अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए। मैं जेसी शर्मा, चेयरमैन ग्लोबल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी आगरा से हूं और इसी विषय में पिछले 40 साल से अधिक समय से कार्य कर रहा हूं। जैसा कि मेरा मानना है, अपना जो देश है, भारत देश है, कृषि प्रधान देश है, इसमें कृषि की पैदावार, बागवानी की पैदावार, दूध की पैदावार, तमाम खाद्य पदार्थों की पैदावार तहासा होती है
2: जी।
1: आज हम विश्व में कृषि में अव्वल माने जाते हैं, कृषि प्रधान देश के जो दुनिया में हमारी पहचान बनी हुई है।
2: बिल्कुल।
1: बागवानी में भी हम दुनिया में विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। केवल एक देश हमसे आगे चल रहा है, बाकी समूचे विश्व में हम कृषि प्रधान ही नहीं, बागवानी प्रधान देश भी पाने का हम बहुत जल्दी हमें अवसर मिलने वाला है
2: जी।
1: और ये सारी चीजें हालांकि देश में बहुत अच्छी तरह से पैदा हो रही हैं, इनकी प्रचुर मात्रा में पैदावार होने के फलस्वरूप हम आज आत्मनिर्भर हैं खाद्यान्न के क्षेत्र में। एक समय था कि हम विदेशों से खाद्यान्न की आपूर्ति किया करते थे, लेकिन आज हम इतने आत्मनिर्भर हैं कि न केवल देश की आवश्यकता पूरा करते हैं बल्कि विदेशों को निर्यात भी बहुत बड़ी तादाद में खाद्यान्नों का भारतवर्ष से किया जा रहा है
2: जी। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन इसको अगर हम एक दूसरे तरीके से देखा जाए कि हम लोग इसे, जो हमारे युवा साथी है, युवा पीढ़ी है जो आने वाली, उसको कैसे हमें रोजगार में जोड़ सकते हैं इस कार्य को लेके?
1: बहुत अच्छा अवसर है, इसमें असीमित संभावनाएं हैं। ये ऐसा कार्य क्षेत्र है कि हमारे पास कच्चे माल की, खाद्यान्नों की, तिलहनी फसलों की, दलहनी फसलों की, बागवानी फसलों की और नाना प्रकार के उत्पादों की कोई कमी नहीं है। दुर्भाग्य है हमारा कि हम जिस तरह पैदावार में विश्व में अग्रणी देशों में गिने जाते हैं, पैदावार के साथ साथ हमारा रखरखाव थोड़ा सा कमजोर है, भंडारण की व्यवस्था समुचित न होने के कारण और उद्योगों का भरपूर विकास न होने के कारण हमारी फसलों का लगभग 25-30% प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है, यानी कि 5,000 करोड़ प्रति माह।

0: की फसलें प्रतिवर्ष बर्बाद हो रही हैं, जो एक गंभीर मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, मैं समझता हूं कि गंभीर चिंतन का विषय है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लिहाजा इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है, इससे संबंधी अनेकों ऐसे रोजगार स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बेरोजगारी भी दूर हो, युवाओं को रोजगार मिले और देश की होने वाली इस महान क्षति को, बहुत बड़ी क्षति को, इस विशाल क्षति को भी रोकने में हम कामयाब हो सकें। इसलिए इससे संबंधित प्रोसेसिंग व्यवसाय की, प्रिजर्वेशन व्यवसाय की सुरक्षित रख करके लंबे समय तक और इस्तेमाल किया जा सके, ऐसे उत्पादों की यूनिटें इकाइयां लगाने की हमें आज बहुत आवश्यकता है और युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए।
1: बिल्कुल सर। सर यहाँ पर हमारे मन में एक छोटा सा सवाल उठता है कि जो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे साथियों को बताएं कि क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से।
0: देखिए, इस देश में विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में
1: जी
0: गेहूं की फसल, चना, मैं समझता हूँ मटर भी यहाँ काफी होती है, और भी अनेकों खाद्यान्न पैदा होते हैं। सोयाबीन का भी शायद कुछ क्षेत्र है यहाँ आसपास मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में
1: जी।
0: तो इससे संबंधी छोटे छोटे फ्लोर मिल हैं, आपके सोयाबीन के उत्पाद हैं, सोया प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ साथ सोयाबीन से रिफाइंड ऑयल है, ऐसे उद्योग हमारे इस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। और जहां तक सवाल है फल सब्जियों का, तो मैं समझता हूँ यहाँ नींबू की और आपके जो है वो अदरक की, टमाटर की बहुतायत से पैदावार होती है। इससे संबंधी बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं, जैसे टमाटर सॉस है, टमाटर प्यूरी है, टमाटर जूस है, टोमेटो पेस्ट है, और इसके अलावा नींबू का बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ यहाँ सिट्रस का एरिया है
2: जी।
0: और सिट्रस से संबंधित उद्योग जैसे कि नींबू जूस है, स्क्वैश है, शरबत है, नींबू का शीरप और अचार है, ये सब सफलतापूर्वक यहाँ ये उद्योग लग सकते हैं। आपका मटर बहुत होती है, मटर को आजकल सफल मटर के रूप में ठंडा करके फ्रोजन फूड के रूप में आईक्यूब यूनिट कहते हैं लगाकर मटर को, हरी मटर को रखा जा सकता है सब्जी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। आजकल सफल मटर काफी लोकप्रिय भी है
2: जी जी,
0: तो उसे भी यहाँ स्थापित करने के पूरे अवसर हैं। साथ ही साथ अदरक से भी संबंधित यहाँ काफी व्यवसाय लग सकते हैं, अदरक की सुखा करके रखा जा सकता है सौंठ के रूप में, इसका कैंडी नाम से उत्पाद बनता है जिसको कहते हैं सूखा मुरब्बा
2: जी जी,
0: और अचार भी बन सकता है और जूस भी निकल सकता है। जिंजर का एक बहुत अच्छा एक ड्रिंक भी बनता है, पेय पदार्थ बेवरेज जिंजर ड्रिंक, जो जाड़ों में औषधीय क्वालिटी का होने की वजह से फूड प्रोडक्ट के साथ साथ मेडिकेटेड प्रोडक्ट भी है, उसकी अपनी औषधीय गुणवत्ता भी है। लिहाजा ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो कि यहाँ लोकल फसलों के आधार पर या आसपास के क्षेत्रों में होने वाली फसलों के आधार पर स्थापित हो सकते हैं और निश्चित रूप से युवाओं को एक अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्षेत्रीय उत्पादों का भरपूर उपयोग होगा और राष्ट्रीय जो फसलों की बर्बादी का जो सिलसिला है वो काफी कम होगा और ये क्षेत्रीय विकास में, प्रोसेसिंग उद्योगों का विकास क्षेत्रीय विकास के लिए एक बहुत अच्छा अवसर, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला साबित होगा।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांडिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और हमारे किसान साथियों में हमारे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे किसान साथी बड़े ध्यान से सुन रहे थे और ध्यान से सुनते सुनते और गीत संगीत भी हुआ है और इनकी बातचीत हमारे जेसी शर्मा जी हैं जो चेयरमैन है फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि कितना अपना भारत में कितने उत्पादन है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था जो चलती है वो खेती से चलती है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की और हमारे किसान साथी समझ गए होंगे कि हमारे जो किसान साथी जागरूक हैं उनको तो और जागरूक होने की जरूरत है, और जो हमारे किसान साथी सोच रहे हैं कि वही परंपरागत खेती उसी ढंग से हम चलेंगे, तो अब समय आ गया है कि हमें अब वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की आवश्यकता है। तो वैज्ञानिक ढंग से हमारे श्रोता साथी किस तरीके से खेती करें, यह भी एक बड़ा सोचने वाली बात है, तो इसके लिए भी आपको बता देना चाहते हैं कि समय समय पर आपके झाबुआ जिले में जो हमारे केवीके है यानी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर हमारे पदस्थ जो वैज्ञानिक रहते हैं, पदस्थ अधिकारी जो रहते हैं, जो कृषि पर विशेषज्ञ हैं, उनसे हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा परियोजना भी चला रही है, तो ऐसे में हम इन सारे जो जानकारी है उनको इकट्ठा कर यदि हम अपनी खेती में बदलाव करें तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में जरूर हम दावा से कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपकी आय में वृद्धि जरूर होगी। क्योंकि जब तक हम अपनी सोच को परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम नई पद्धति से वैज्ञानिक पद्धति से खेती नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। खास तौर पर देखा जाता है क्योंकि पथरीला इलाका है, कैसे करें, पानी रुकता नहीं है और रुकने के साथ साथ जो हमारे किसान साथी उनके पास सीमित जमीन है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो ड्रिप जो कि हमने पहले ही बताया था कि इसकी योजना चलाई जा रही है, ड्रिप बाय स्प्रिंकलर हुआ इसकी योजना चला रही है, शासन की योजना से लाभ लेकर हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है हमें इन योजनाओं का लाभ लेने का। खेती किसानी में आप किस तरीके से बीज उपचार कर यदि हम खेती बाड़ी करें तो जायज सी बात है कि आने वाले समय में हम अपनी खेती में परिवर्तन ला सकते हैं और अपनी खेती को बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात सोचने वाली और सुनने वाली बात है, और आपको खुशी होगी कि आपके इस झाबुआ जिले में रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुन खुल गया है, तो आप जरूर सुनिएगा क्योंकि बाहरी महत्वपूर्ण खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं, और जरूर सुनिएगा और जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। और हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे कि हम कैसे फीडबैक दें, फोन नंबर तो होना चाहिए, तो आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा फोन नंबर जो है, जो आप हमें कॉल करके हमें बता सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके यदि सवाल है, उस सवाल का जो आप हमें प्रश्न पूछेंगे, उस सवाल का हम जवाब भी अपने विशेषज्ञ से जरूर देंगे। नोट करिएगा, हमारा नंबर है 94251436303 यानी 9425413603। हिंदी में बता देते हैं, 49425413603 इस नंबर पर कॉल करके और हमें अपने जो भी आपके सवाल हैं उसको आप रख सकते हैं, और हम अपने विषय विशेषज्ञ से आग्रह करेंगे उन सवालों का आपका जवाब सही समय पर मिले, जिससे हमारे किसान साथी अपनी खेती में परिवर्तन करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का यानी विराम का, लेते हैं एक छोटा सा संगीतमय विराम। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: तरफ मारे थोड़ा सा।
1: तो देखिए, जैसे खेती में जो मूलभूत खेती है उसके अतिरिक्त उसमें क्या जोड़ सकता है, आपको एक उदाहरण के साथ मैं बताऊं। यही जो आपका बिरगुआ है वहां पे किसान ने पिछले साल ब्रोकली लगाया
2: जी।
1: लोग सामान्य रूप से बोलते हैं कि ब्रोकली कौन खाता है, लेकिन उस किसान की ब्रोकली 300 रुपए केजी और करीब 1.5 लाख रुपए की उसने जो है
2: जी
1: आय अर्जित करी पूरे सीजन में। तो इस तरीके से चेरी टोमेटो है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपका सलाद में बहुत सारे आपके सलाद आजकल हैं जो मार्केट में आते हैं, उसके सीड भी अवेलेबल हैं। तो जरूरी ये है कि आप दो चीजें ध्यान रखिए कि एक तो मार्केट में किस फसल की कितनी डिमांड है
2: जी।
1: और उसकी क्या प्राइसिंग है
2: जी।
1: दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज ये है कि टमाटर ये सब भी करिए, लेकिन उसके लिए भी टाइमिंग सेट करिए कि किस टाइम पर मार्केट में जाने पर, जैसे धनिया टमाटर आज के परिवेश में अभी वर्तमान में मंडी में जाएं तो धनिया 200 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, इस तरीके की फ्लक्चुएशन रेट पर नॉर्मली बिकती है। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, केवल आपको हाई बेड तैयार करनी होती है धनिया की, जो सामान्य रूप से सामान्य खेत होता है उस पर नहीं ग्रो करती है। आप थोड़ा सा खेत के को आप हाई करिए, उस पर बेडिंग करिए, जिससे आप धनिया के सोइंग करेंगे तो जिस तरीके की धनिया आपके मार्केट में अवेलेबल होती है सामान्य किसान भी धनिया को कर सकता है। तो अगर आपको इस तरीके के संसाधन या अपनी आय बढ़ानी है तो आपको ये सब चीजों की जानकारी लगातार बनाए रखनी पड़ेगी कि क्या मार्केट में किस सब्जी की, किस फसल की क्या डिमांड है। धनिया, जैसे धनिया केवल दोनों ही पर्पज से इस्तेमाल होती है, हरी सब्जी की, हरी मतलब सलाद या सब्जी में डालने के लिए, चटनी बनाने के लिए। दूसरा जो है उसके सीड का बहुत बड़ा स्कोप है। आप मंदसौर मंडी है मध्य प्रदेश में, लोग एक समय ऐसा आता है कि बड़े बड़े व्यापारी अपना जो है या बड़े बड़े जिनके पास पैसा होता है वो बुक कर देते हैं कि हमारा 200 बोरा रख दो, जब ऑफ सीजन होगा तब हम उसको सेल करेंगे। तो मेरा मतलब है कि थोड़ा सा ये भी चीजें हैं कि अगर जिस समय आप उत्पादित करके हुआ तुरंत बेच के आप बेचने के बजाय उसको रखे रहें, कुछ समय तक वेट करें, जब आपका ऑफ सीजन दिखे मार्केट में उस टाइम में आप इसको सेल करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा जो मैं बताया बागवानी और ये दोनों चीजें, आपका फिशरीज एक बहुत बड़ा है सेक्टर, आपको बताऊं कि कितना जल का कितना प्रभाव है कि उससे प्रॉपर नहरें बनाई जाएं या जिससे आपका बेतवा है या और जो नदियां हैं, तो ये भी एक रीजन रहा है थोड़ा पिछड़ेपन का। तो ये भी उसमें एक जरूरी है कि जल संसाधन, जल मैनेजमेंट, आज अमृत धारा या अमृत जो आपका योजना चल रही है कि हर घर पे जो है पाइपलाइन या पाइपलाइन। तो ये भी हो कि हर किसान के घर पर कितना वन ड्रॉप वन क्रॉप जो आपका कॉन्सेप्ट है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसको भी ये फॉलो हो यहाँ पर भी, तो ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे और उससे उनको फायदा होगा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे किसान साथियों की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी,
1: बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
4: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने हमारे विषय विशेषज्ञ संतोष पांडे जी को सुना, उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जिस तरीके की हमने खेत बनाए हैं, जिस तरीके की हमारी इस झाबुआ जिले में हमारे किसान साथी खेत करते हैं, खेती करते हैं, और जैसा मिट्टी है उस हिसाब से हमें सब्जियों को लगाना चाहिए, उस हिसाब से हमें अपने खेती को करना चाहिए। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि आप वैज्ञानिक पद्धति से खेती करिएगा, तभी आय में वृद्धि होगी। और खासतौर पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात पर जोर डाला है कि हमारे किसान साथियों को थोड़ा रोक के हमें बेचना चाहिए, जो भी आपके उत्पादन हुआ है उसको हम सोच समझ कर बेचना चाहिए, तभी हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जब तक हम अपने वैज्ञानिक पद्धति से खेती नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर झाबुआ जिले की बात करें तो यहाँ पर पथरीला इलाका है और हमारे किसान साथी कितनी मेहनत करते हैं, कम से कम 10-10 15-15 पानी लगते हैं तब वो फसल का उत्पादन होता है। ऐसे में कौन सी पद्धति ऐसी होती है, कौन सी पद्धति ऐसी है जो अपने झाबुआ जिले में हम लोग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सलाह लेने की आवश्यकता है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आप जाइएगा, उनसे सलाह लीजिएगा, कृषि विस्तार अधिकारी भी आते हैं, उनसे सलाह लीजिएगा, समय समय पर आत्मा भी परियोजना चला रही है, उनसे भी जाकर सलाह ले सकते हैं और अपनी खेती को वैज्ञानिक पद्धति से कर सकते हैं। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर, फोन नंबर है हमारा 94-25-41-36-03, इस नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं खेती किसानी से जुड़ी। साथियों, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं इन प्यारे से गीतों को। नमस्कार।

Oh,

Yeah.

0: तड़प मारे थोड़ो।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
2: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत तो।
1: दोस्तों 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय त्योहार है। आइए आप सभी का स्वागत है, अपने देश की आजादी को सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं कि हम आजाद हैं। और बात करते हैं बहुत सारे लोगों से, उनके शब्दों में आजादी क्या है, क्या सोचते हैं वो आजादी को, हमारे देश को लेकर क्या विचार है उनके, चलिए

0: तो दोस्तों हमारे साथ हैं अतुल मलिक राम जी इंदौर से। अतुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन जो राष्ट्रीय त्योहार हम मनाते हैं उसी के बारे में आपसे बात करने के लिए मैं आतुर हूं। स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए अतुल जी, आपके लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब है?
1: समानता हो, स्वतंत्रता तब हम फील कि मेरे सामने कोई दिखे उसको भी स्वतंत्रता इतनी हो कि उसको भी बराबरी से खाना मिले, उसको बराबरी से शिक्षा मिले, तब देश स्वतंत्र प्रॉपर होगा और मैं भी स्वतंत्र फील करूं। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, किसी के बच्चे खराब स्कूल में पढ़े, तब तक स्वतंत्र नहीं हूं मैं परतंत्र हूं, हमेशा तब तक रहूंगा।
0: बड़ी खूबसूरत बात कही साहब, बहुत ही खूबसूरत बात कही। तो अतुल जी, स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है, 15 अगस्त की बात हो रही है, तो स्वतंत्रता दिवस की कोई प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए ना, आपकी प्यारी याद।
1: स्वतंत्रता दिवस पर सर वैसे तो खुशियां मनाते ही है पूरा देश कि हम स्वतंत्र हुए थे। मेरे लिए ये त्योहार राष्ट्रीय त्योहार होने के साथ साथ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस दिन जब बहुत छोटे थे तो हमें 2 लड्डू मिलते थे।
0: वाह,
1: बहुत खुशी होती स्कूल में 2 लड्डू के लिए। हम सारा दिन धूप में बैठकर या बरसात में बैठकर किसी नेता का इंतजार करते हुए 2 लड्डू के इंतजार।
0: जी जी जी,
1: वो दिन बचपन से अभी तक हमें याद है।
0: वेरी क्यूट।
1: स्वतंत्रता दिवस वाले दिन 2 लड्डू मिलते, वो 2 लड्डू की खुशियां जो होती थी
0: जी,
1: वो मुझे लगता है बचपन की खुशी आज तक दिमाग में जहन में है। शायद आज 2000 लड्डू हम बांटते होंगे, लेकिन वो 2 मिलने वाले लड्डू की खुशी थी ना, वो सबसे बड़ी याद है और हमेशा रहेगी जीवन में।
0: बहुत ही प्यारी बात कही अतुल जी, मतलब आपने तो मेरा बचपन भी मुझे याद दिला दिया। और बड़ी अजीबोगरीब सी खूबसूरत बात यह है कि ऐसा लग रहा है मुझे पूरे हिंदुस्तान में 15 अगस्त में जो भी कार्यक्रम होते हैं स्कूलों में, वो हर बच्चा 2 लड्डू का ही इंतजार करता है। लिफाफा हुआ करता था छोटा सा, उसके अंदर वो लड्डू होते थे। क्या बात है, मुझे लगता है जाने कितने ही लोगों के जहन में ये सीन घूम गया होगा कि उन्होंने भी अपने बचपन में देखा था। बहुत बढ़िया अतुल जी, थैंक यू सो मच।

0: मुझे ये बताओ अतुल जी कि क्या आज भी आप झंडा फहराने का कार्यक्रम देखते हैं या उसमें भाग लेने जाते हैं?
1: हाँ सर, मैं स्वतंत्रता दिवस में जाता हूँ। मैं उन जो दो लड्डू का इंतजार किसी जमाने में करता था, तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि वो दो लड्डू, उसका मुझे रीपे करना है। आज ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है,
0: जी
1: तो मैं
0: जी
1: बहुत सारी जगह जाता हूँ स्वतंत्रता दिवस पर, जितना मुझसे यथासंभव हो सकता है। वो दो लड्डू की परिपाटी या दो लड्डू की परंपरा हमने जारी रखी हुई है,
0: वाह,
1: और हमें जितने भी ऐसे स्कूल्स मिलते हैं जहां पर लगता है कि लड्डू नहीं बट रहे, सिर्फ झंडा बंधन हो रहा होगा, हम वहां जाके वो दो लड्डू बांटते हैं ताकि बच्चों को वो खुशी महसूस हो और बड़े होके वो भी दो दो लड्डू सब जगह बांटे।
0: क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन अतुल जी। देखिए दोस्तों, आपने सुना अतुल जी किस तरीके से समाज में अपना योगदान देते हैं। एक बात होती है अतुल जी की, बस बोलते रहो ऐसा कर दो वैसा कर दो, बड़ी बड़ी बातें हम लोग बोल डालें। और एक दोस्तों ये बात होती है कि आप किसी स्कूल में पहुंचे जहां बच्चे उन दो लड्डुओं का इंतजार कर रहे हों, आपने वहां पर 100-200 लड्डू बांट दिए। मैं मानता हूं, पर्सनली मेरा मानना यह है कि ये हुआ हमारे देश के प्रति हमारा समर्पण, हमारा साथ देना, हमारा तो क्या कहना चाहिए, पार्टिसिपेट करना, ये हुआ बड़े बड़े भाषण देकर नहीं। बहुत बढ़िया अतुल जी, थैंक यू सो वेरी मच।

0: आगे बढ़ते हुए सर आपसे पूछना चाहूंगा, आजादी के 78 साल हो गए, फिर भी हम किन किन क्षेत्रों में अभी हमको मेहनत करनी बाकी है?
1: सर मैं मानता हूं कि आजादी सिर्फ हमारे लिए बस दो देशों का बंटवारा है। हम दिल से भी अलग नहीं हुए थे, ये अलग बात है। और असली अगर आजादी हमें चाहिए तो हमारी गरीबी मिटे, हमारे यहाँ से भुखमरी मिटे और हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिले। जब तक ये तीन चीजें नहीं होगी तब तक देश कभी
0: पूरी तरह से आजाद
1: और अपने आप को पूरी तरह से आजाद नहीं होगा। हम स्वर्णिम भारत की तरफ जा रहे हैं 2047 की तरफ। तरह मेरे मन में लेकिन एक विचार हमेशा आते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर या बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे होंगे। 2047 की तरह हम देखते हैं तो गरीबी कैसे मिटेगी? हम 82 करोड़ लोगों को आज भी अनाज बांट रहे हैं, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, तो कैसे लोग गरीबी मिटाने के लिए मेहनत करेंगे? वो मेरे दिमाग में हमेशा प्रश्न रहता है।
0: जी जी जी।
1: क्वालिटी के एजुकेशन है, छोटी छोटी गलियों में स्कूल खुल गए जिनकी टीचर्स कोई नहीं आता, तो कैसे बच्चों को शिक्षा दे रही होंगी, कैसे उनका बौद्धिक विकास हो रहा होगा, नहीं मालूम। तो 100 साल बाद भी अगर हम आजादी की बात करें, शायद हम 1947 में जैसे थे 2047 में भी हम वैसे होंगे। हम

0: की यानी हम दुनिया में पांच टर्नियम वाली विश्व शक्ति जरूर बन चुके होंगे, लेकिन इंटरनल अगर मैं बात करूं देश में तीन ऐसी समस्याएं हैं, जब तक ये तीन समस्या नहीं मिटेंगी हम आजाद नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। इसके पीछे तो निरत प्रयास निरत कोशिशें चलती ही रहनी चाहिए। और कई बार हम लोग नॉर्मल रूटीन बात करते हैं लोगों से यूं ही खड़े खड़े, तो वो कहते हैं साहब सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो ये नहीं कर रही। अरे सारा काम सरकार का ही है क्या? आपने क्या किया अपनी तरफ से? दोस्तों अभी अभी अतुल जी ने बताया कि किसी स्कूल में अगर लड्डू नहीं बट रहे तो वो जाके, अरे यार 100-200 लड्डू कितने पैसे के आते हैं बॉस, हम सब अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और जाके वहां पर बांटना। अब आप कहने लगे नहीं सरकार बांटेगी, सरकार बांटेगी। अरे सरकार कौन है, सरकार का क्या चेहरा है? हम ही तो हैं जिन्होंने वोट देकर सरकार बनाई। तो दोस्तों आगे बढ़िए, गरीबी उन्मूलन की बात हो रही है या शिक्षा की बात हो रही है तो
0: खुद भी पढ़ा सकते हैं
1: जी,
0: आप अपना ड्यूटी करने के बाद एक घंटे आसपास के बच्चों को जाके
1: खुद भी पढ़ा सकते हैं।
0: सैटरडे संडे छुट्टी होती, आप कहीं भी 10-20-50 बच्चों को बैठ के पढ़ा सकते हैं। अगर आप सक्षम है पढ़े हुए हैं तो बहुत चीजें पढ़ाने की हो सकती है, सब कुछ पढ़ा सकते हैं। अगर मैं बच्चे के पास मोबाइल है मोबाइल पे भेज सकते हैं।
1: बिल्कुल।

0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अतुल जी। कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, मतलब यू लाइक हिम, लाइक यार ये थे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे कौन थे?
1: मैं सर तीन नाम अपने दिमाग में और जहन में हमेशा रखता हूँ। सबसे ऊपर भगत सिंह को रखता हूँ, 23 साल का बालक जिसने एक ज्योति जलाई।
0: वाह,
1: वो सबसे बड़े मानता हूँ मैं कि जिन्होंने 23 साल के बालक ने वो कर दिखाया जो हमारे देश में कई बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए थे
0: जी।
1: दूसरे नंबर मानता हूँ मैं चंद्रशेखर आजाद को
0: जी,
1: जिनकी हिम्मत और जिनकी हौसले को देख के तो हमेशा नमन करते हैं। और तीसरे पे सुभाष चंद्र बोस जी को,
0: जिन्होंने
1: अपनी पैरेलल सेना बनाई। यही लोग स्वतंत्र सेनानी है, बाकी सब तो मेरे लिए कोई मायना नहीं।
0: बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट दिस। बहुत ही शानदार तीनों पर्सनैलिटीज, तीनों शख्सियत, बहुत जोरदार, मतलब किसी की परवाह ना करते हुए जो सच था उसका साथ निभाया
1: जी।
0: जो होता है देखा जाएगा कि मानसिकता इनकी, लेकिन जो सच था, जो सही था, वो इन्होंने किया। बेहतरीन, बहुत खूब।

0: आगे बढ़ते हुए पूछना चाहूंगा कि आज की पीढ़ी को, जो आज की जनरेशन है, उसको आपको क्या लगता है देश के लिए क्या योगदान करना चाहिए? चाहिए की बात करते हैं, अभी वो कर रहे हैं या नहीं वो बाद में देखेंगे, क्योंकि जो बच्चे सुन रहे होंगे उनको कुछ तो संदेश मिलेगा कहीं ना कहीं।
1: मैं सर एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जो बच्चे सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो स्वच्छ राजनीति में आए, एक साफ सुथरी राजनीति करते हुए अपने माध्यम से बाकी लोगों का भला करें, क्योंकि यहाँ राजनीति से परिवारवाद पटक गई है। परिवार ही है वही बनेंगे, वही नेता बनेंगे, नहीं आप आगे आए, देश को अच्छे लोगों की जरूरत है, देश चाहता है कि स्वच्छ राजनीति करते हुए आप देश में सेवा करें। यही मेरा एक संदेश हो सकता है यूथ को कि वो आए, आगे आए, राजनीति में अपना करियर बनाए और सीखे, वो स्वच्छ रह के सीखे, वो सेवा करे। सबसे बड़ा माध्यम है स्वच्छता के साथ राजनीति करना।
0: बिल्कुल ठीक कहा साहब आपने। आज की यंग जनरेशन के पास बहुत एनर्जी है, बहुत नॉलेज है, बहुत ओपननेस है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, तो राजनीति में क्यों नहीं उनका पदार्पण होना चाहिए। उनको आप ऐसा समझ लीजिए ना, देश की सेवा करते करते आप एक करियर बना रहे हैं, तो आइए और कुछ नई सोच लाइए। बिल्कुल सही कहा अतुल जी आपने, बहुत बढ़िया।

0: आपके शहर में या गांव में आसपास में 15 अगस्त के दिन कौन कौन से खास आयोजन चलते हैं?
1: मेरे शहर में सर देखिए झंडा बंधन तो हर जगह होते हैं।
0: जी जी जी,
1: एक बड़ा सबसे बड़ा झंडा भी हमारे शहर में लगता है जो कई समय पहले से लगना चालू होता है और स्वतंत्रता दिवस के बाद भी लगा, एक बड़ा का आयोजन होता है। कई दौड़ होती है, कई रन होती है अलग अलग जगह पर, सेलिब्रेशन होते हैं, एक्टिविटीज बहुत होती है हमारे शहर में, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे यहाँ पर कवि सम्मेलन होते हैं, ऐसे कई एक्टिविटीज होती है। बिल्कुल नेता लोग जो है, जो यथाकथित जो नेता होते हैं वो बस्तियों में जा जाके मिठाइयां बांटते हैं अपने वोट के लिए भी और अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए भी, समाज बांटते हैं बस्तियां, ये यानी आबाद रहता है ये वाला दिन गरीब लोगों के लिए भी, कि लोग नेता आते हैं, नेता जागते हैं, सफेद कपड़े पहनकर बस्तियों में जा जाके मिठाइयां बांट के गाड़ियों पे अपने झंडे लगा के।
0: ये बात तो बिल्कुल ठीक है, चाहे आप पार्टिसिपेट करें या ना करें, खिड़कियों से झांक लें, आपको शहर तो पूरा रंगीन दिखाई देगा। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा जुझारू किस्म के होते हैं, जो उस दिन को भी प्यार से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। गरीबों में तो ये जुझारूपन भर भर के भरा होता है, बड़ा मजा आता है साहब। हमारे अध्यात्म से संबंधित कोई फेस्टिवल नहीं होता ये, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा सही कहा आपने।

0: अतुल जी, ये सवाल आपको थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता है। फर्ज कीजिए आपको एक दिन के लिए हम इस देश का प्रधानमंत्री बना दें, एक दिन के लिए, तो क्या देश में बदलाव लाना चाहेंगे आप?
1: मैं अगर एक दिन का, वैसे तो ये कल्पना में है,
0: जी
1: अगर
0: जी,
1: मैं एक दिन का देश में प्रधानमंत्री बना तो जो सबसे बड़ी बात है कि देश की शिक्षा अगर सुधर जाएगी तो देश सुधर जाएगा। तो जो स्कूलों में डिफरेंसेस हैं, बड़े स्कूल छोटे स्कूल या टीचर्स पढ़े लिखे नहीं, टीचर्स को प्रॉपर एक दिन में ट्रेनिंग का शेड्यूल बना के ताकि वो नियम पास हो जाए, हमेशा चले। टीचर क्वालिफाइड होने चाहिए, बच्चों के स्कूलों का सबसे बेहतर स्तर होना चाहिए, सारा पैसा बच्चों के स्कूलों पे लगे, उसके बाद लगे उनके स्वास्थ्य पर। तो अगर हम बचपन सुधार देंगे तो बाकी पूरा जीवन सुधरे। एक दिन का मैं प्रधानमंत्री बना तो शिक्षा ही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य होगा, वो भी प्राइमरी शिक्षा, वही एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको मैं बदलना चाहूंगा।
0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात कही अतुल जी आपने।

0: धन दौलत के लालच में तोहीन हो ईमान की, बच्चों तुम तकदीर हो।
1: आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त। हमारे सारे जो देशवासी हैं, हमारे जो दोस्त यार सब लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप?
2: सिर्फ एक ही संदेश है सर, दो लड्डू जो बचपन में याद है थी।
1: आए।
2: जितना ज्यादा हो सके उतने बांटिएगा, और एक दिन ना बांटिएगा, हर दिन को स्वतंत्रता दिवस बना के गरीब बच्चों के अंदर जिनके लिए लड्डू नसीब नहीं होते हैं, शिक्षा और गरीबी के लिए खासकर काम करें, मिठाई बांटिए और दो लड्डू खिलाइए और किताबें दीजिएगा। यही मैं संदेश और यही सब मैं चाहता हूँ अपने आसपास वालों से कि आज के दिन तो खासकर दो लड्डू सबको बांटे जब भी मनाया जाए, जितना बांट सकते हैं।
1: बहुत सुंदर दोस्तों, आपने सुना अतुल जी ने बात शुरू की दो लड्डू से, जो कि हमारे बचपन की सौंधी सौंधी यादों में बसा हुआ है, और आज भी उस दो लड्डू की व्यापकता और उसका मतलब बहुत भारी है। दोस्तों, अतुल जी का संदेश है, उन दो लड्डुओं को याद कीजिए, बांटिए, बच्चों को बांटिए, हमारे आसपास के लोगों को दीजिए, जिससे त्योहार और मीठा और रंगीन हो जाए। अतुल जी, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में।
2: थैंक यू समीर सर, आपने मुझे इस लायक समझा। आपके सुनने वालों को भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत तो।
1: दोस्तों 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय त्योहार है। आइए आप सभी का स्वागत है, अपने देश की आजादी को सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं कि हम आजाद हैं। और बात करते हैं बहुत सारे लोगों से, उनके शब्दों में आजादी क्या है, क्या सोचते हैं वो आजादी को, हमारे देश को लेकर क्या विचार है उनके, चलिए सुन।

0: दोस्तों आज हमारे साथ राशि जीना मौजूद हैं। 15 अगस्त पे बहुत बहुत शुभकामनाएं राशि। राशि आपके वर्ड्स में आपके लिए फ्रीडम का, स्वतंत्रता का क्या मतलब है?
1: तो फ्रीडम मतलब कि जैसे तो फ्रीडम मतलब जैसे कि मैं फ्रीली चीजें कर पाऊं एज अ गर्ल। मुझे लगता है कि इंडिया पे या फिर और कंट्रीज वगैरह पे लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है हर फैमिलीज में, कुछ कुछ फैमिलीज में। तो क्या होता है कि मैं चीजें सोच पाऊं इजीली, मैं कर पाऊं चीजें फ्रीली। एज टॉकिंग अबाउट मी, तो मेरी फैमिली में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, बट मैंने बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा देखा है कि लड़कियों को ना बाहर जाने देते हैं, ना फ्रीली उनको कुछ कपड़े पहनने दे सकते हैं। तो वो दबाव महसूस करना लड़कियों पे, तो मुझे लगता है कि फ्रीडम इस मुकाम पे अब तक नहीं पहुंच पाया लड़कियों के लिए।
0: दोस्तों आपने सुना राशि जी का, बहुत क्लियर कट मीनिंग है फ्रीडम का कि हमको 78 साल हो गए लेकिन फिर भी हमारे देश में भी दूसरे कई और देशों की तरह स्त्रियों को, महिलाओं को, बच्चियों को उतनी आजादी अब भी नहीं है। अगर ये आजादी हमें मिलती है, एक रेस्पेक्टफुल आजादी, तब हम उसको आजादी को कंप्लीट मान सकते हैं।

0: अमेजिंग। राशि मुझे ये बताओ कि जितनी भी उम्र है आपकी, आपने काफी 15th अगस्त के दिन तो देखे ही हैं, बचपन से लेकर आज तक स्कूल जाते रहे आप, कितने 15 अगस्त के दिनों देख लिए, लेकिन इन सारे 15 अगस्त के जो दिन गुजरे उसमें से सबसे प्यारी याद कौन सी है आपकी, कुछ याद है आपको?
1: यस सर, सर जैसे अब तो मैं कॉलेज पूरा कर लिया है, बट मेजरली मैं जब 15 अगस्त का जो फंक्शन है वो मैं अपने स्कूल टाइम में बहुत अटेंड करती थी, तो जो सबसे फेवरेट चीज थी कि उस फंक्शन में देखना कि जो लास्ट में हमें एक स्वीट मिलता था फॉर द रिमेम्बरेंस की, एक मतलब उनका एक टाइपो था कि हाँ हर 15 अगस्त में पहले से भी मतलब चलाता था कि कोई या फिर लड्डू दे दे या फिर कोई मिठाई दे दे, तो उसका मेरे को बहुत इंतजार रहता था। प्लस जो हमारे जो स्किट वगैरह होती थी वो देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक रहती थी 15 अगस्त को देखने के लिए।
0: ब्यूटीफुल। दोस्तों आपने सुना, जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हो रही है 15 अगस्त के सेलिब्रेशंस के बारे में, सबके बीच में एक चीज कॉमन निकल के आ रही है, वो चार या दो लड्डू। देखिए आज की बिल्कुल यंग जनरेशन, राशि जैसे लोग भी उन लड्डुओं का ही इंतजार करते थे। इसका मतलब ये हुआ कितने साल गुजर गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन वो लड्डू हमेशा से कायम है। बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात।

0: राशि, क्या आज भी आप झंडा फहराने के कार्यक्रम को देखने के लिए या 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं क्या?
1: सर, एज यूजुअल मैं पार्टिसिपेट तो नहीं करती, बट मेरे अंदर अभी भी वही दिलचस्पी है कि मैं जैसे सुबह के टाइम पे मैंने मतलब ऐसा है कि मैं 15 अगस्त कभी मैंने मिस नहीं किया है स्कूल में, तो अब मेरा स्कूल टाइम खत्म हो गया है, तो मैं जैसे मुझे उस टाइम पे बहुत इंटरेस्ट था तो अभी भी मुझे वही इंटरेस्ट है। मैं सुबह बैठ के टीवी खोल के मैं पूरा प्रोग्राम देखती हूँ जो ऑफिशियली कंडक्ट कराया जाता है बाय द गवर्नमेंट, तो वो मुझे देखना पसंद है जब तक वो खत्म ना होता है, और साथ साथ में जो नरेशन होती थी उन सब सोल्जर्स और सब लाइक उनके बारे में बताया जाता था, तो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वही बैठ के वो सुनती हूँ। अब बाकी पार्टिसिपेशन अभी तो मैं इतना लेती नहीं हूँ, अब स्कूल टाइम पे बहुत लेती थी, बट मुझे वो सुनना अब बहुत पसंद है।
0: वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। एक बड़ी मजेदार सी बात दिमाग में आ रही है, आप जब कह रही थी कि हम बचपन में एक भी दिन आपने एक भी 15 अगस्त मिस नहीं किया, वैसे ही सोच रहा हूं मैं अपने आप को आपके साथ रख रहा हूं, सोच रहा हूं कि क्या हमारे हम सभी लोगों के घर के आसपास कोई ना कोई छोटा मोटा स्कूल तो होता ही है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, क्या आज हम जिस उम्र में आ गए हैं हम जा नहीं सकते क्या उस स्कूल में और जाके कह दें जो भी वॉचमैन हो या टीचर हो या प्रिंसिपल हो, उनके जाके कह दें कि साहब मुझे अपने बचपन के दिन याद करने हैं तो मैं जस्ट इस सेलिब्रेशन को अटेंड करने आया हूं, कैन यू प्लीज अलाउ मी, तो वो निकाल तो नहीं देंगे बाहर और फिर हम चुपचाप वहां पर उस सेलिब्रेशन को देखें, अपने चार लड्डू ले और घर चले आए, ऐसा हो सकता है कि नहीं?
1: हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। इवन अगर जहाँ से आप पढ़े हैं, कोई भी पढ़ा है तो वहां पर भी जाके आप कॉन्टेक्ट करें, कहीं भी जाए, कोई भी स्कूल में जाए कि बोले कि हाँ मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, फिर मुझे कुछ चार बातें बतानी है स्टूडेंट्स को, तो पॉसिबल है सर, एंड देन आप वो लड्डू लेकर आ सकते हैं जो बांट रहे हो।
0: दैट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया, दैट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया। दोस्तों आपने सुना, सोच के देखिए और अगर कर सकते हो तो करिए, बहुत मजा आएगा।

0: राशि अमेजिंग, स्वतंत्रता संग्राम, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जिससे हमको आजादी मिली, उसमें कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जानें दी, कुर्बानियां दी। उन सब में से, उन सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से कौन थे जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, कौन है आपके हीरो?
1: सर, बचपन से मैं वही सुनता हूँ अपने मम्मी पापा से कि लाइक भगत सिंह, स्कूल में भी मैंने बहुत सुना है, तो मेरे को भगत सिंह जो थे मुझे बहुत ब्रेव लगे, बहुत अच्छे थे। मतलब लाइक उन्होंने एक्चुअल में जो फ्रीडम फाइटर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इन लोगों का जो स्ट्रगल था वो बहुत अहम था और बहुत मतलब सीखने लायक था कि उन्होंने एक्चुअल में सामना, ब्रिटिशर्स का सामना करके एक्चुअल में देश के लिए लड़े हैं। तो वो मुझे लगता है कि मेरे नजरों में वो एक्चुअल फ्रीडम फाइटर्स हैं, एंड और बहुत सारे हैं, सिर्फ यही नहीं है। तो ये दो सर मेरे फेवरेट है।
0: अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। दोस्तों, आपने गौर किया, सुना, मैंने उम्र दराज लोगों से भी बातचीत की 15 अगस्त के बारे में और यही सवाल उनसे भी पूछा, और मैं ये राशि जीना से बात कर रहा हूं जो आज की जनरेशन है, बिल्कुल यंग हिंदुस्तानी है। और मजेदार बात है कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस सब भी लोगों के फेवरेट हीरो निकल के आ रहे हैं। दिस इज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। बहुत खूब कहा राशि आपने, बड़ी अच्छी बात कही। तो यानी कि पुराने लोगों से लेकर यंग जनरेशन तक ये लोग पॉपुलर हैं, उनके फेवरेट हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। बहुत बढ़िया।

0: राशि कुछ अंदाजा है आपके शहर में जहां आप रहती हैं या आपके गांव में 15 अगस्त पर कौन कौन से अरेंजमेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, आयोजन होते हैं, कुछ आइडिया?
1: यस सर, जैसा मैंने मतलब अपने कुछ सेक्टर्स में आसपास जहां मैं रहती हूँ वहां गवर्नमेंट जो कार्यालय है वहां पे देखा है, प्लस मैंने अपने स्कूल में ही सबसे पहले कोई चीफ गेस्ट आता है, फिर अपना जो हमारा इंडियन फ्लैग उसको लहराता है, फिर हमारा नेशनल एंथम होता है, एंड देन हमारा जो ऑल ओवरऑल दिन का प्रोग्राम होता है वो होता है, जो कि लाइक जैसे स्कूल में बच्चे ही और मैं भी खुद पार्टिसिपेट करती कोई स्किट्स में और स्पीचेस वगैरह में, तो वो सुनने और देखने में बहुत अच्छा लगता था। सबसे अहम जब हमारा होता था कि परेड होती थी, तो वो परेड करने में सर इतना अच्छा लगता था कि लाइक खुद पे एक कॉन्फिडेंस और एक अच्छा लगता था कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, एंड देन साइड बाय साइड नरेशंस होती थी अलग अलग, तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता था।
0: बहुत बढ़िया, यस एब्सोल्युटली राइट। सो दीज आर द सेलिब्रेशंस जो हमारे देश में 15 अगस्त को चारों तरफ होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है कि ये एक ऐसा त्यौहार है जो किसी एक संप्रदाय अकेले का नहीं है, ये हम सबका है और सेलिब्रेशन करीब करीब एक जैसे होते हैं छोटे से गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक। बड़ी खूबसूरत बात कही राशि आपने, थैंक यू सो मच।

0: किसी सुपर हीरो को, मतलब जैसे सुपर हीरो है ना, एवेंजर्स टाइप्स, उनमें से किसी को आप भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहें, मतलब वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाए जो भारत को हमेशा सपोर्ट करे, भारत को हमेशा प्रोटेक्ट करे, तो किसको चुनोगे आप?
1: एक्चुअल मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैंने एवेंजर्स अभी देखा नहीं है.
0: ओके, एनी अदर सुपर हीरो जो आपके दिमाग में आते हो जिनको आप भारत का मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहें?
1: आई होप सर कोई ऐसा नॉन फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन कोई करेक्टर होना. मैं चाहती हूँ कि कोई एक्चुअल में एज अ किसी के पास भारत के लिए कुछ करने के लिए, जैसे हमारे एक्चुअल फ्रीडम फाइटर्स जो पहले से ही हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं मेरे लिए वो सुपर हीरोज है जो एक्चुअली इंडिया के लिए उन्होंने कुछ किया है.
0: एब्सोल्युटली
1: यस, नॉट जस्ट कि कोई मैं कोई करेक्टर आए और वो एज अ सुपर हीरो कहलाए. तो मेरे लिए तो सब फ्रीडम फाइटर्स ही सुपर हीरोज है जो जिन्होंने इंडिया के लिए कुछ किया है.
0: अमेजिंग, दैट्स ब्यूटीफुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा राशि, जिन्होंने हमारे देश के लिए सचमुच कुछ किया है. फ्रीडम फाइटर जो थे उनमें से किसी को एक चुना जा सकता है हमारे देश का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए. बहुत बढ़िया.

0: राशि, अगर 15 अगस्त को यानी कि इंडिपेंडेंस डे को सभी को एक एक सुपर पावर सैंक्शन की जाए, तो आपको कौन सी सुपर पावर चाहिए? यू नेम इट एंड यू दैट विल बी ग्रांटेड टू यू.
1: जैसे मैं बोलूं मुझे चाहिए तो बहुत चाहिए, बट जो एक है कि लाइक मैं यहाँ से करप्शन और जो भी चीज है वो मैं हटा पाऊं, लाइक जो दिन पर दिन लाइक क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों की लाइक मानसिकता ऐसी हो गई है कि मतलब बहुत ईगो आ गया है, तो वो दिन पर मतलब ना उनको सोचना है ना समझना है, तो इतना क्राइम्स बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं करप्शन और वो सब हटा पाऊं इस देश से और एक बेटर लिविंग कर पाऊं, क्योंकि मुझे जहां तक मेरा पर्सपेक्टिव है, इसे मेरा पर्सपेक्टिव है कि यहाँ पे लाइक बेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज है. तो
0: ओके ओके अमेजिंग, ठीक है. फिर भी राशि, आई वुड जस्ट लाइक टू पुश यू स्लाइटली. ये तो जो आपने बताया ये आपका आउटकम है, जो आपको सुपर पावर दी जाएगी उससे जो आप कर देंगे, लेकिन सुपर पावर आपकी होगी क्या? मतलब भुला देने वाली, उन सबको साइलेंट कर देने वाली, उनकी गाड़ियां स्टार्ट ना हो, लाइट गायब हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, सब लोगों को मतलब कुछ क्या, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू? मतलब आपकी सुपर पावर होगी क्या? सम लेजर आईज, हीट वेव्स, बहुत ज्यादा ठंड, क्या क्या मतलब आपकी सुपर पावर क्या?
1: जो लाइक जो कोई भी अगर कोई क्राइम करने से पहले मैं उनको ऐसे पजेस कर दूं कि वो गायब हो जाए.
0: हाँ करेक्ट,
1: गलत काम करने से पहले.
0: ये हुई ना सुपर पावर की, आपको ये पता चल जाए कि दिस गाय इज गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग और आप उसे गायब कर दें, है ना?
1: यस
0: करेक्ट, ये हुई ना सुपर पावर.
1: गायब कर दे कि वो मिल ही ना पाए.
0: राइट, अमेजिंग, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने.

0: राशि, अगर आपको स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को एक मैजिकल माइक मिल जाए जिस पर आपको बोलना हो, तो आप पूरे देश को क्या कहेंगे उस मैजिकल माइक से?
1: एक्चुअल मैं लाइक उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग आज की जनरेशन जिनको सुपर हीरो और मानती है वो एक्चुअल में नहीं है. तो जैसे आजकल बहुत सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चलने लग गया कि किसी को देख के उनको अपना आइडल मान देना, किसी को भी लाइक जो पाल ऐसे काम भी कर रहा है. तो मैं उनको बस यही बताना चाहूंगी कि जो एक्चुअल में सुपर हीरो थे वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स और जितने भी हमारे सोल्जर्स और हमारे आर्मी वाले वो है, कि उन लोगों ने हमारे देश के लिए कुछ किया है.
0: ओके, अमेजिंग, बिल्कुल क्लियर कट. दोस्तों गौर कीजिएगा, ये आज की जनरेशन का रिप्रेजेंटेशन है, ये जिन्होंने अपने आप को पेंट कर रखा है सोशल मीडिया वगैरह पर. एक्चुअल हीरो वो नहीं है, एक्चुअल हीरो वो थे जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपनी कुर्बानी देके चले गए. बहुत खूब.

0: राशि, कोई फिल्मी गाना याद पड़ता है आपको जिससे आपको 15th of August को या इंडिपेंडेंस डे के रिलेशन में जिससे आपको जोश आ जाता हो, सुन के मजा आ जाता हो? एनी सॉन्ग?
1: सर, ऐसे तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, लाइक मेरे को भी ऐसे नाम याद नहीं आ रहा है, बट हमारे स्कूल में ही बजता था, लाइक वंदे मात ए वतन तेरे लिए, ये बहुत मतलब हमारे स्कूल टाइम में बजता था, ये मेरे ये गाना बहुत दिमाग में बैठ गया है. एंड रंग दे बसंती, ये सारे गाना बहुत सारे मतलब मैंने सुने हैं अपने बचपन में, तो वही ये दो गाने मेरे लाइक मोस्ट फेवरेट जो मतलब ज्यादा ज्यादा ज्यादा मैंने सुने हैं.
0: गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स.

0: राशि, थैंक यू सो वेरी मच. आज 15 अगस्त पर आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत अच्छा लगा. यंग जनरेशन की बातें सुनकर, उनके विचार जानकर भी बहुत समझ में आया. राशि, आपको 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू.
1: थैंक यू, आपको भी सर.
2: तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय हिंद, जय भारत.

शुभ प्रभात दोस्तों, रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज में आपका स्वागत है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन में। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुनते रहें रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आज पुष्पा बसनेत के बारे में, जो एक प्रसिद्ध समाज सेविका हैं नेपाल में। बहुत पहले दार्शनिकों ने ये स्थापना दी थी कि गुणों के एक तल पर मनुष्य ईश्वर के बराबर आ सकता है, और वो गुण है करुणा। शायद यही कारण है कि सज्जन लोग अक्सर कहा करते हैं कि परमार्थियों के कारण ही ये दुनिया आकर्षक बनी हुई है, वरना फरेबी और मक्कार लोग तो इसे कब का बदसूरत बना चुके होते। आइए आज एक ऐसी ही परमार्थी महिला पुष्पा बसनेत की कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने अपने सद्कार्यों से न सिर्फ इंसानियत का सर बुलंद किया बल्कि इस दुनिया को कुछ और सुंदर बना दिया। आज से करीब 40 साल पहले काठमांडू नेपाल में एक कारोबारी घराने में पैदा हुई पुष्पा के पिता बेहद तरक्कीमंद थे। वो अपने बेटे बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करते थे। पुष्पा 3 भाई बहन हैं। भाई उनसे बड़े हैं और बहन छोटी। जाहिर है उनका बचपन बहुत सुकून से गुजरा, मगर उनका दिल किताबों में नहीं लगता था। खाना पकाना और साइकिल चलाना उन्हें बेहद पसंद था। खैर, किताबों और कक्षाओं से भारी जंग लड़ते हुए वो किसी तरह 10वीं तक आ गईं। मगर इसके इम्तहान को लेकर पुष्पा से ज्यादा घर वालों की धुकधुकी बड़ी हुई थी, और आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। जिस रोज बोर्ड के नतीजे आए, पिता को जापान जाना पड़ा। वो रोते हुए हवाई अड्डे की ओर बढ़े। माता पिता कितने भी अमीर क्यों ना हों, औलाद के भविष्य को लेकर वो हमेशा परेशान रहते ही हैं। पिता के ये आंसू बेटी के दिल में जा गिरे। पुष्पा को अगली बोर्ड परीक्षा के लिए भले ही 1 साल का इंतजार करना पड़ा, मगर वो पिता के लिए मुस्कुराने का मौका लेकर आई। शहर के सेंट जेवियर्स कॉलेज ने समाज शास्त्र में ग्रेजुएशन करने की अनुमति दे दी। रुचि का विषय था तो पुष्पा का दिल भी लग गया। उस समय उनकी उम्र 21 साल थी। वो चाहती तो एक सुकून भरी हुई जिंदगी का इंतखाब कर सकती थी, मगर ख्यालों ने अचानक करवट मार ली। दरअसल स्नातक करते हुए एक प्रोजेक्ट के तहत पुष्पा काली माटी जेल जा पहुंची, जहां पर महिला कैदियों के हालात पर उन्हें एक पर्चा तैयार करना था। मगर पुष्पा जब जेल के उस हिस्से में दाखिल

तो वहां एक दुखद आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। उनकी नजर एक 9 महीने के बच्ची पर पड़ी जो अपनी मां की गोद में सलाखों के उस पार थी। वो बेहद प्यारी बच्ची थी। उसकी कैदी मां से पुष्पा जब बातचीत कर रही थी, उसी वक्त उसने पुष्पा की शॉल अपनी मुट्ठी में भींच ली और यूं मुस्कुराई मानो हजारों मोनालिसाएं एक साथ खिलखिला पड़ी हों। उस बच्ची की दिलकश मुस्कान पुष्पा के साथ चली आई, मगर वो हमेशा के लिए उनकी आंखों में बस गई। कैदियों के साथ मासूम बच्चों को यूं सलाखों के पीछे देखना उन्हें हैरान और गमजदा कर गया था। उन पर पहली बार ये खुलासा हुआ कि जिन कैदी माता पिता के अबोध बच्चों को बाहर संभालने वाला कोई नहीं होता, उन्हें कानून ये इजाजत देता है कि वो 8 साल तक उन्हें अपने साथ जेल में ही रख सकते हैं। इस व्यवस्था का मकसद शायद उन मासूमों को अविश्वसनीय रिश्तेदारों के बुरे व्यवहार और मानव तस्करों से बचाना था। लेकिन 8 साल के बाद क्या होना था और फिर उनकी आजादी का क्या? इस सामाजिक अध्ययन ने पुष्पा को कई दिनों तक बहुत परेशान रखा। उसी दौरान एक 5 साल की बच्ची की दर्दनाक कहानी जब उन्हें पता चली, तब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तय किया कि वो इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। दरअसल उस बदनसीब बच्ची को पिता ने ही हवस का शिकार बना डाला था, क्योंकि उसकी मां किसी अन्य पुरुष के साथ भाग गई थी। आजाद फिजा में कैदियों के बच्चों की परवरिश का ख्याल जब पुष्पा ने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताया, तो किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। सबको यही लगा कि ये वक्ती जज्बात हैं, कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे। आखिर तब उनकी उम्र थी ही क्या, कुल 21 साल। मगर सींकचों के उस पार पड़े बेगुनाह बच्चों की दुखद अवस्था ने पुष्पा के मन पर गहरा असर डाला था। उस जेल अध्ययन के 2 महीनों के अंदर उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से 70,000 रुपए इकट्ठा करके किराए के घर में ही अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत कर दी। अपने माता पिता को समझाने में तो पुष्पा को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कैदी अभिभावकों को भरोसे में लेना बहुत कठिन था। लेकिन इरादे पवित्र थे तो बाधाओं को भी पिघलना ही था। आखिरकार 5 बच्चों के साथ उनका केंद्र शुरू हुआ। सोमवार से शनिवार तक वो रोज सुबह उन बच्चों को जेल से निकालकर अपने सेंटर ले आती और फिर दोपहर में उनके कैदी अभिभावकों को सौंप आती। धीरे धीरे बच्चों की संख्या 40 के करीब पहुंच गई। उनमें से कई ने तो पहली बार जेल के बाहर कदम रखा था। पुष्पा 8 साल से बड़े बच्चों के लिए एक मुकम्मल आवासीय परिसर बनाना चाहती थी, ताकि वो आजाद माहौल में पल समर सके। सन 2012 में सीएनएन ने उन्हें हीरो अवार्ड से नवाजा। उसके साथ मिली हुई 41 लाख रुपए की रकम ने उनका यह सपना भी पूरा कर दिया। इस धन से उन्होंने जमीन खरीदी और बटरफ्लाई होम का निर्माण कराया। उसके बाद से उन्होंने करोड़ों रुपए के इनाम जीते, जिनसे उन्होंने ग्रामीण जेलों के करीब भी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की। इनके कई बच्चे अब कॉलेज पहुंच चुके हैं। वे सब प्यार से पुष्पा को मामू बुलाते हैं और नेपाल अपनी इस बेटी पर गदगद है। पुष्पा ने इन बच्चों को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।